एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ₹103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन।

प्रभु सदैव सभी प्राणियों पर कृपा करते हैं। कृपामय जीवन ही वास्तविक जीवन है। मनुष्य शरीर की प्राप्ति प्रभु कृपा का परिणाम है। स्वस्थ शरीर, तीर्थों की उपस्थिति, सत्संग, भजन, कीर्तन आदि उन्हीं की कृपा का प्रतिफल है। प्रभु की कृपा अनुकूल प्रतिकूल समस्त परिस्थितियों में निहित है। जैसे ढके हुए पात्र में वर्षा जल नहीं भर सकता, ठीक उसी प्रकार कृपा से लाभान्वित होने के लिए साधनों से यथासंभव मुख नहीं मोड़ना चाहिए। कृपा अभिलाषी बने रहना मानव मात्र के लिए अभीष्ट है। अपने अभिमान को पूर्णतया भूलकर स्वधर्म का पालन करते हुए ही प्रभु की कृपा को पाया जा सकता है।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जिस तरह बड़े जलाशय की मछलियां हमेशा सुखी रहती हैं, उसी तरह प्रभु की शरण में गए व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा नहीं आती है।

जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों को मिटा देती है।

ये थी वंदना कार्यक्रम की अंतिम भक्ति रचना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री राम चरित मानस गान।

बेटियों को विदा कर बारातियों से विदा मांगते हुए राजा जनक ने समधि तथा उनके स्वजनों का भरपूर सम्मान किया। मुनि मंडली के सामने शीश झुकाकर उनका आशीष प्राप्त किया और फिर जामाताओं को हाथ जोड़े अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए बोले, आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन बनाकर मुझे अपनाया। मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा अपरिमित है। मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे ये याचना करता हूं कि मेरा मन भूलकर भी आपके श्री चरणों को ना छोड़े। श्री राम ने पिता दशरथ, मुनिवर विश्वामित्र, कुलगुरु वशिष्ठ तथा पिता सदृश जनकराज का विनयपूर्वक सम्मान किया। मिथिलेश ने भरत को स्नेहपूर्वक प्रेमाशीष दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आशीषा और फिर मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में नतमस्तक हुए, जिनकी कृपा से ही आज उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बोले, हे स्वामी, आपकी अनुकंपा से ही मुझे ये सुख, सुयश और सभी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी। इसमें आज विशेष पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस, आज की खबर और मौसम पर जानकारी साझा की जाएगी। 7:40 पर सुनेगा हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। गाने सुहाने ये कार्यक्रम सुनिएगा 8:30 पर। सुबह 9 होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि। सुबह 10 सुनिएगा कार्यक्रम गीतों का कारवां। 10:30 पर पहाड़ों के सुर कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे हिमाचली गीत और लोकगीत। गूंज पहाड़ों की ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 11:05 पर। 11:30 पर जय हिंद गीत माला कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम सुनेगा दोपहर 12:00। 12:30 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा सुनो सखी। दिन में 3:05 पर जिला की चिट्ठी कार्यक्रम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: फिल्मों से भजन सुनेगा शाम 5:10 पर। 5:30 पर युवा मंच कार्यक्रम में आज सुनेगा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो जीनियस। 6:05 पर किसान वाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मौजा गराइंदियां। 7:10 पर विशेष कार्यक्रम संस्कृति आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस देशगान 8:30 पर। रात 9:15 पर हिमदर्शन कार्यक्रम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। 9:30 पर चित्र भारती और रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुबह 9:20 पर दिन में 11:00 दोपहर 3:00 शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 8:00 समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या रात 9:00 न्यूज एट 9 रात 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। ये थी आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले संस्कृत में समाचार 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य ओडिशा पश्चिम बंगयोः प्रवासे भविष्यति। ओडिशायाः मयूरभंज मंडले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः 68वें जन्मदिवसोत्सवे प्रधानमंत्री तया सह पहाड़पुर ग्रामे सम्मिलितो भविष्यति। तदनन्तरं तौ नेतारो ओडिशा राज्ये मोहन चरण माझी प्रशासनस्य वर्षद्वयस्य कार्यकाल पूर्त्यवसरे एकां विशाल जनसभां संबोधयिष्यतः, यत्र हि 47,000 कोटितोप्यधिक रूप्यकाणां विकासात्मक परियोजनानां शुभारंभो भविष्यति। पश्चिम बंगे प्रधानमंत्री पश्चिम बंग दिवसावसरे भागं ग्रहीष्यति, यत्र हि अनेकासां प्रणालीनां शिलान्यासम् उद्घाटनं च विधास्यति। अस्मिन्नेव अवसरे प्रधानमंत्री पीएम कृषि सम्मान निधिं प्रसारयिष्यति, येन देशस्य 9.44 कोटि कृषकेभ्यः 80+8,18,000 रूप्यकाणि साक्षात् तेषां वित्तकोशेषु स्थानान्तरितानि भविष्यन्ति। एनटीए इति राष्ट्रीय परीक्षा संघटनेन प्रख्यापितं यत् श्वः आयोज्यमानायाः नीट यूजी 20-26 पुनः परीक्षायाः निष्पक्षं पारदर्शं च संचालनाय वयं पूर्णरूपेण सज्जाः। परीक्षेयं भारतस्य 150+500 नगरेषु, विदेशस्य च 14 नगरेषु आयोज्यन्ते। इत्यन्तराले एनटीए संस्था परीक्षार्थीनां साहाय्यार्थम् एकाम् आधिकारिक व्हाट्सएप वाहिनीमपि निरमात्। संघटनेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे आधिकारिकाः सन्देशाः केवलं तस्य प्रमाणीकृत संख्यातः एव प्रेषयिष्यन्ते। सा संख्या वर्तते 9178279802877 इति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रत्यपादीत यत् अशांत जगति भारतेन स्वकीय राष्ट्रहितस्य रणनीतिक स्वायत्ततायाः अथ बहुध्रुवीयतायाः रक्षणं कुर्वता सहैव विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रैः सह स्वसंबंधाः इतोपि सुदृढाः करणीयाः। नवदिल्ल्यां भारत अमेरिका मञ्चस्य गोष्ठ्याः सत्रं सम्बोधयन् डॉक्टर जयशंकरः अवोचत् यत् अनेक जटिलतासु सत्सु अपि भारत अमेरिका देशयोर सहभागित्वं विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अविरतं वर्धमानम् अस्ति। तेन सविशेषं प्रकटीकृतं यत् यथा यथा भारतस्य वैश्विक उत्कर्षो भविष्यति तथा तथा तस्य राष्ट्रीय हितानि अपि विशालानि विविधानि च भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य एकस्य कार्यक्रमस्य अंतर्गतं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनायां चतुःशताधिक द्विसहस्र कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहन राशिं वितरितवान्। एकस्मिन् महत्वपूर्णे निर्णये सर्वोच्च न्यायालयः उदघोषयत् यत् निर्धारिते पदपथि चलनस्य अधिकारः नागरिकस्य मौलिकाधिकारो वर्तते। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा अथ न्यायमूर्ति ए एस चंद्रूरकर इत्यनयोः प्रतिपादितं यत् निर्धारित पदपति चलनस्य नागरिकस्य अयं मौलिको अधिकारः प्राथमिकः अस्ति, सहैव यन्त्रीकृत वाहनानां गमनागमनस्य अपेक्षया अस्य प्राथमिकता भविष्यति। फीफा विश्व कप प्रतियोगितायां मैक्सिको दलेन दक्षिण कोरिया दलम 1-0 अंकांतरालेन पराजितम्। क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान योर्मध्ये तृतीया अंतिमा च एक दिवसीय स्पर्धा अद्य अपराह्णे चेन्नई नगरस्य एमए चितंबरम क्रीडांगणे भविष्यति। अवधेयं यत् एषः द्वन्द्वः अपराह्णे 1:30 वादनतः समारप्स्यते। इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।

0: इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंक कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Magal. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the president's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Pahadpur and offer prayers at sacred groves Santali Jahera and Ho Jahera Skill Center and Pahadpur School. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During the program, they will inaugurate and lay the foundation stones of various development projects worth over 47,000 crore rupees. During his two-day visit to West Bengal, the Prime Minister will participate in Paschim Banga Divas West Bengal Day celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch Dedicate to the Nation and lay the foundation stones of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. India's senior bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next vice president of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agarwal, currently serving as secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the global anti-money laundering and counter-terror financing watchdog. The decision was made during the FATF plenary held from 17th to 19th June. The Ministry of External Affairs has termed Mr. Agarwal's selection a major win for India. In a social media post, the ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "The appointment reinforces India's relentless focus on combating global terrorist financing networks and dismantling illicit financial systems." The National Testing Agency, NTA, has said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026, re-examination, which is scheduled for tomorrow. In a statement, NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted more than 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed. The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has approved a series of reforms aimed at improving market efficiency, easing compliance requirements and strengthening regulatory frameworks across the financial sector. At the 214th meeting of SEBI held in Mumbai yesterday, the SEBI board simplified the transmission of securities for legal heirs and claimants that are in the name of deceased investors. The decision was taken to introduce a new quick transmission processing category for small value claims to enable faster processing with reduced documentation. The regulator has also enhanced simplified documentation limits, removed mandatory PAN submission in certain cases, and accepted QR code-enabled death certificates to ease verification. SEBI has also approved the reintroduction of open market share buybacks through stock exchanges from 1st August this year, with revised timelines and stricter compliance norms. The board has also allowed mutual funds to undertake intraday borrowings to manage temporary liquidity mismatches. The Supreme Court has expressed serious concern over what it described as a deep-rooted nexus between banks, asset reconstruction companies and borrowers, questioning the manner in which large loan defaults are being settled. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice V. Mohan observed that public money collected from taxpayers is being lent through banks, but effective efforts are often not made to recover these dues. The court said that it was concerned about the misutilization of public money, which should have been spent for the welfare of people. In cricket, the third and final ODI between India and Afghanistan will be played at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai this afternoon. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. The hosts have already secured the series with a 2-0 lead and will be aiming to complete a clean sweep of the 3-match series. And that is the end of this news bulletin.
3: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी।
4: सुबह सुहानी।

नमस्कार श्रोताओं, सुबह सुहानी कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं संगीता। हर नई सुबह हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है, बीते कल की गलतियों को भूलकर आज एक नई शुरुआत करें। याद रखें कि आपकी सकारात्मक सोच ही आपके दिन को खूबसूरत बनाती है, इसीलिए चेहरे पर मुस्कान रखिए, मेहनत पर विश्वास रखिए और अपने लक्ष्य की ओर एक और कदम बढ़ाइए। आपका दिन मंगलमय और ऊर्जा से भरपूर होगा। और सुबह सुहानी कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आज के सुविचार के साथ। जिसने वाणी का महत्व समझ लिया वो सर्वत्र सफल होगा, इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले एक बार अवश्य सोच लें।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, भारतीय इतिहास में 20 जून का दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था और अंग्रेजों के खिलाफ ब्लैक होल यानी काल कोठरी की घटना भी इसी दौरान हुई थी। 1858 में ग्वालियर पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया था, जिसे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी सिपाही विद्रोह के लगभग अंत के रूप में माना जाता है। मुंबई के प्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस 1877 में आम लोगों के लिए खोला गया था। 1996 में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया था। अपने विशिष्ट विक्टोरियन गोथिक शैली के लिए ये स्टेशन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और इसे 2004 में इस सूची में शामिल किया गया था। महाराष्ट्र के पुणे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नत्थीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। और श्रोताओं, 20 जून 1947 को बंगाल विधानसभा में हुए मतदान के बाद बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसके उपरांत पश्चिम बंगाल का गठन हुआ था। इसी उपलक्ष में पश्चिम बंगाल दिवस मनाया जाता है। भाषा और प्रशासनिक आधार पर राज्य के आधिकारिक पुनर्गठन के बाद भारत सरकार द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1956 को दिया गया था।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी के गाए अनोखी अदा फिल्म के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सुबह सुहानी में। जिन महान हस्तियों के जन्म आज के दिन हुए उनके बारे में आपको बता देते हैं। 1958 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। 1950 में भारतीय सिनेमा के बहुमुखी अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और श्रोताओं, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन लोगों के साहस, शक्ति और दृढ़ संकल्प को सम्मान देने के लिए समर्पित है जिन्हें अपने ही देश में उत्पीड़न, संघर्ष, युद्ध या हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहली बार ये दिवस 2004 में मनाया गया था। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर शरणार्थियों की स्थिति, उनकी समस्याओं और उनके अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना है, उनके साहस की सराहना करना और उन्हें एक सुरक्षित जीवन देने के लिए वैश्विक एकजुटता को बढ़ाना, ताकि शरणार्थियों के पुनर्वास और सहायता के लिए बेहतर नीतियां बनाई जा सके। शरणार्थी संकट केवल किसी एक देश या क्षेत्र की समस्या नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक मानवीय चुनौती है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उसे सुरक्षा, सम्मान और सुरक्षित वातावरण में रहने का पूरा अधिकार है।

0: खबर आज की।
1: जी हाँ श्रोताओ, आज की खबर पर नजर डालते हैं। विद्युत उपमंडल सिद्धपुर के सहायक अभियंता के अनुसार 11 केवी बरवाड़ा फीडर में आवश्यक रख रखाव के कारण 20 जून यानी आज फतेहपुर, सिद्धपुर, तपोवन, बाघणी, झियोल, बरवाड़ा, छैंटी और बरेह में सुबह 9 बजे से कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। हिमाचल प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों और लंबे ट्रैफिक जाम को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और सरकार तथा पीडब्ल्यूडी से जवाब मांगा है। बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में लगभग 11,000 पदों पर भर्तियों की तैयारी की जा रही है।

मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आंधी, बिजली चमकने और कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और 25 जून तक मॉनसून के प्रदेश में दस्तक देने का की संभावना जताई गई है। 20 जून को हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने तेज़ आंधी तूफान और भारी ओलावृष्टि का ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है।

0: इसी के साथ सुबह सुहानी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।
1: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम धर्मशाला। 7:40 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शुभ प्रयाग।

शुभ प्रयाग कार्यक्रम में आज सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अशोक चौधरी और साथियों का गाया हुआ ये लोक भजन।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa.

परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नई विक्टोरियस स्टाइल कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हार्ड ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्तें लागू।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ रिले की जाएगी।

0: सबका प्यारा
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सबका प्यारा
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
5: पीएम किसान।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई का

0: बल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं।

0: जो दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स हैं, इनमें एनवीडिया और इंटेल के चिप्स भी शामिल हैं, और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियाँ कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 2014 में केवल एक से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 8 अरब डॉलर से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नव भारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
3: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan

0: गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस गीत के साथ हमने आगाज किया आज के कार्यक्रम का। गीत को गाया था गीता दत्त और लता मंगेशकर ने, संगीत से संवारा था वसंत देसाई ने।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa.
4: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। टीएनसी अप्लाई।
0: गाने सुहाने कार्यक्रम का अगला गीत पेश कर रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, शंकर जयकिशन का संगीत है, फिल्म है हरियाली और रास्ता।

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर,
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: RBI कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दिस जून मेक एवरी ड्राइव फील स्मूदर एंड एवरी जर्नी स्पेशल प्रेजेंटिंग द बोल्ड बलेनो द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इक्विप्ड विद फीचर्स लाइक 360 डिग्री कैमरा हेड्स अप डिस्प्ले एंड सेफ्टी थ्रू 6 एयरबैग्स द बलेनो कैन नाउ बी योर्स at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry! Offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
3: गाने सुहाने ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। नूरजहां फिल्म का गीत अब पेश कर रहे हैं। रोशन का संगीत है, आवाजें हैं आशा भोसले और उषा मंगेशकर की।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: गाने सुहाने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत आपको सुनवा रहे हैं। मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
4: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

इसी के साथ गाने सुहाने कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और संगीता हाजिर है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीतांजलि के साथ, और सभी श्रोताओं को हमारा सलाम।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गीतांजलि कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं बॉबी जासूस फिल्म का गीत। स्वानंद किरकिरे ने गीत लिखा है, संगीत है शांतनु मोइत्रा का, आवाजें हैं श्रेया घोषाल और पेपॉन की।

0: गीतांजलि कार्यक्रम के बाकी के गीत आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों के बाद।
1: कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
3: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
6: अच्छा, इसमें क्या होगा?
5: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
6: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
5: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
6: अच्छा,
5: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त करेंगे जारी। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं को स्वावलंबी बनाने व रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन अधिकार नियम के तहत 2183 सड़कों को वन भूमि हस्तांतरण की व्यापक योजना तैयार करने के संबंधित विभाग को दिए निर्देश। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभियान करेगा संचालित। और कल दुनिया भर में मनाया जाएगा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे के दौरान आज हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं को स्वावलंबी बनाने और उन्हें रोजगार देने के साथ अन्य के लिए भी रोजगार पैदा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कल शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और उस लक्ष्य को आने में युवाओं का बड़ा योगदान होगा। सुरेश कश्यप ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है।
1: इस योजना के माध्यम से जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं और जो एम्प्लॉयज हैं, उसमें अगर मैं हिमाचल की बात करूं, करीब 12 करोड़ की राशि हिमाचल प्रदेश को दी गई है। लक्ष्य यही है कि हमारा देश जो एक युवा देश है और इस देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस दिशा में हमारे युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान हो और युवा हमारा स्वावलंबी बने, अपने लिए अपितु दूसरों को भी रोजगार देने में कामयाब, उस दृष्टि से ये उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है।
0: इस बीच उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित की। उन्होंने कहा कि योजना का लक्ष्य देश के 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना है। उद्योग मंत्री ने कहा कि रोजगार बढ़ाने की दिशा में ये एक अच्छी पहल है।
2: रोजगार को बढ़ाने के लिए कदम जो है किया गया, उसको हमने हिमाचल प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट किया है और लगभग कोई 5,500 कर्मचारी जो है हिमाचल प्रदेश के लाभान्वित हुए हैं और कोई 5.5 करोड़ रुपए के करीब जो है इंसेंटिव के रूप में राशि जो है वितरित की गई है। तो एक बहुत अच्छी पहल और बहुत अच्छा कदम है कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो है हमारे जो टेक्निकल लोग हैं, स्किल डेवलपमेंट वाले लोग हैं, वो किस तरह से प्राइवेट सेक्टर में आए, सर्विस सेक्टर में आए, तो बहुत अच्छी शुरुआत है। इंसेंटिव भी दिया जा रहा है, इनको मेडिकल कवर भी दिया जा रहा है और इससे जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ने के आसार है।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत 2183 सड़कों के लिए वन भूमि हस्तांतरण की व्यापक योजना तैयार करने के संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। शिमला में वन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण संपर्क अवसंरचना को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से कई सड़कें दूर दराज के लोगों को महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करती है और विशेष रूप से राज्य के आपदा संभावित क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा है कि भारत की महान कलात्मक परंपराओं में कांगड़ा लघु चित्रकला का एक विशिष्ट स्थान है। वे कल शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में कांगड़ा लघु चित्रकला शिविर में निर्मित कलाकृतियों की 5 दिवसीय प्रदर्शनी के शुभारंभ मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने इस अमूल्य कलात्मक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है। इस मौके पर उन्होंने भारतीय संस्कृति, ज्ञान व परंपराओं के संरक्षण के लिए संस्थान द्वारा किए जा रहे सार्थक प्रयासों की सराहना भी की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला शहर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत विधानसभा परिसर के समीप बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में तेजी लाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस फ्लाईओवर परियोजना के प्रगति कार्यों के निरीक्षण कार्यों के दौरान उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने से यातायात की सुगमता होगी और संपर्क व्यवस्था में बेहतर सुधार होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है। परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनः परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। एनटीए ने एक वक्तव्य में कहा कि पुनः परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में संचालित की जाएगी। 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। परीक्षा एजेंसी ने कहा कि स्वतंत्र और

0: पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित। कल दुनिया भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, जो सभी आयु वर्ग के लिए योग के महत्व पर बल देता है। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के समन्वित प्रयासों से इस वर्ष विश्वभर में लगभग 2500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों के युवाओं ने स्पीति घाटी का दौरा किया। दूसरे चरण के दूसरे दिन इन युवाओं ने सीमाओं की रक्षा में तैनात सैनिकों का जीवन, यहां की संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण के महत्व को जाना। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: भारत सरकार के विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न राज्यों से आए युवाओं ने स्पीति घाटी का दौरा किया। दूसरे चरण के दूसरे दिन युवाओं ने कादा स्थित ITBB बेस कैंप का भ्रमण किया, जहां उन्हें सीमाओं की रक्षा में तैनात जवानों के जीवन, कर्तव्यों और चुनौतियों के बारे जानकारी दी गई। इस दौरान हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया। इसके बाद युवाओं ने DFO स्पीति गोल्डी छाबड़ा के साथ संवाद कर क्षेत्र के जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझा। प्रतिभागियों ने प्रसिद्ध की मॉनेस्ट्री लालुंग गांव और एशिया के सबसे ऊंचे सस्पेंशन पुलों में शामिल चिचम पुल का भी भ्रमण किया। 21 सदस्यीय ये युवा दल ग्यू, होल्डिंग, लालुंग और कादा खास सहित सीमावर्ती गाँव में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसी गतिविधियों में भाग ले रहा है। यह कार्यक्रम युवाओं को सीमा, संस्कृति और प्रकृति से जोड़ने का अनूठा अवसर प्रदान कर रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 22वीं बैठक कल शिमला में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव KK पंत ने की। बैठक में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के सहयोगी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पंत ने कहा कि बैठक में जल की हिस्सेदारी, खाद्य सुरक्षा, महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी और आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, नीट अभ्यर्थियों को HRTC बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा सुविधा, 20 से 22 जून तक एडमिट कार्ड दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे। हिमाचल दस्तक के शब्द है, अब BBMB में हिस्सेदारी और एरियर के लिए लड़ेंगे CM सुक्खू। दिव्य हिमाचल की एक खबर है, हिमाचल के जंगलों में 22,600 करोड़ का खजाना, अर्थव्यवस्था के लिए बनेगा संजीवनी। पंजाब केसरी बतौर जयराम ठाकुर लिखता है, प्रदेश के हितों को बेच हितेशी बनने का कर रहे ढोंग मुख्यमंत्री। बघाट बैंक की BOD को सरकार ने किया सस्पेंड, 30 दिन में मांगा जवाब शीर्षक से दैनिक भास्कर ने खबर को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त करेंगे जारी। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, PM विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं को स्वावलंबी बनाने व रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन अधिकार नियम के तहत 2183 सड़कों को वन भूमि हस्तांतरण की व्यापक योजना तैयार करने के संबंधित विभाग को दिए निर्देश। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली NEET UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभियान करेगा संचालित। और कल दुनिया भर में मनाया जाएगा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें अधिकार जाने,
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है गीतांजलि कार्यक्रम में। बैंड बाजा बारात फिल्म का ये गीत सुनिए, श्रेया घोषाल की आवाज़ है।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.

गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। किक फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं सलमान खान और मीत ब्रदर्स की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने और संगीत है मीत ब्रदर्स का।

हर्षदीप कौर का गाया हुआ ये था जब तक है जान फिल्म का गीत। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। राजनीति फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाजों में। धुन बनाई है प्रीतम ने।

नेहा कक्कड़ और आयुष्मान खुराना के गाए इसी गीत के साथ आज का गीतांजलि कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

चेहु का ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज़ दी है श्रेया घोषाल और शबाब सांवरी ने। संगीतकार हैं साजिद वाजिद, गीतकार हैं समीर अंजान।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य

0: थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
1: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार। सुक्खू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं गीतों का कारवा और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त प्रवेश।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम तुम पे मरते हैं का ये प्यारा सा गीत, और जिसमें आवाज़ दी थी लता मंगेशकर और उनका साथ दे रहे थे उदित नारायण।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं बाजी फिल्म से, और जिसको गाया है लता मंगेशकर और शबीर कुमार ने। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल,

0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, अब अपने रेडियो सेट पर कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति सुनिए 1981 की फिल्म एक ही भूल का ये सदाबहार गीत। इस प्यारे से गीत को जिन दिग्गजों ने गाया है, उनके नाम है आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम। इन दोनों ने अपनी आवाज़ दी है और इसमें संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और बोल हैं

103.4 मेगाहर्ट्ज पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवा। अब समय हो रहा है श्रोताओं 10:30। आइए अब मिलकर सुनते हैं पहाड़ों के सुर कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला लोकगीत आपने सुना अंजना और रीता देवी की आवाज में।
1: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पहाड़ों के सुर कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, अब मिलकर सुनवाते हैं आपको ये अगला लोकगीत विक्रांत की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे पहाड़ों के सुर, 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 11 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज हुगली जिले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं को स्वावलंबी बनाने और उन्हें रोजगार देने के साथ अन्य के लिए भी रोजगार पैदा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कल शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और उस लक्ष्य को पाने में युवाओं का बड़ा योगदान होगा। सुरेश कश्यप ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है।
1: इस योजना के माध्यम से जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं और जो एम्प्लॉयज हैं, उसमें अगर मैं हिमाचल की बात करूं, करीब 12 करोड़ की राशि हिमाचल प्रदेश को दी गई है। लक्ष्य यही है कि हमारा देश जो एक युवा देश है और इस देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस दिशा में हमारे युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान हो और युवा हमारा स्वावलंबी बने, अपने लिए अपितु दूसरों को भी रोजगार देने में कामयाब, उस दृष्टि से ये उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है।
0: इस बीच उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित की। उन्होंने कहा कि योजना का लक्ष्य देश के 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार

0: उपलब्ध करवाना है। उद्योग मंत्री ने कहा कि रोजगार बढ़ाने की दिशा में ये एक अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत 2183 सड़कों के लिए वन भूमि हस्तांतरण की व्यापक योजना तैयार करने के संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। शिमला में वन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण संपर्क अवसंरचना को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से कई सड़कें दूर दराज के लोगों को महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करती है और विशेष रूप से राज्य के आपदा संभावित क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनः परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। एनटीए ने एक वक्तव्य में कहा कि पुनः परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में संचालित की जाएगी। परीक्षा एजेंसी ने कहा कि स्वतंत्र और पारदर्शी परीक्षा निश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार के विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों के युवाओं ने स्पीति घाटी का दौरा किया। दूसरे चरण के दूसरे दिन इन युवाओं ने सीमाओं की रक्षा में तैनात सैनिकों का जीवन, यहां की संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण के महत्व को जाना। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: भारत सरकार के विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न राज्यों से आए युवाओं ने स्पीति घाटी का दौरा किया। दूसरे चरण के दूसरे दिन युवाओं ने कादा स्थित आईटीबीपी बेस कैंप का भ्रमण किया, जहां उन्हें सीमाओं की रक्षा में तैनात जवानों के जीवन, कर्तव्यों और चुनौतियों के बारे जानकारी दी गई। इस दौरान हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया। इसके बाद युवाओं ने डीएफओ स्पीति गोल्डी छाबड़ा के साथ संवाद कर क्षेत्र की जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझा। प्रतिभागियों ने प्रसिद्ध की मॉनेस्ट्री लालुंग गांव और एशिया के सबसे ऊंचे सस्पेंशन पुलों में शामिल चिचम पुल का भी भ्रमण किया। 21 सदस्यीय ये युवा दल ग्यू, हुंडिंग, लालुंग और काजाखास सहित सीमावर्ती गाँव में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसी गतिविधियों में भाग ले रहा है। यह कार्यक्रम युवाओं को सीमा, संस्कृति और प्रकृति से जोड़ने का अनूठा अवसर प्रदान कर रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: कल दुनिया भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, जो सभी आयु वर्ग के लिए योग के महत्व पर बल देता है। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के समन्वित प्रयासों से इस वर्ष विश्वभर में लगभग 2500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
2: ४०३.४ मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पहाड़ों की गूंज।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज किया हमने वर्षा कटोच की आवाज में।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: आइए श्रोताओं, अब मिलकर सुनते हैं अगला लोकगीत रीता शर्मा की आवाज में।

0: this June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त प्रवेश। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं पहाड़ों के गूंज। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं संतोष सिंह राणा की आवाज़ में ये अगला लोकगीत।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: नई विक्टोरियस, स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएंगे और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
3: आइए श्रोताओं, अब अपने रेडियो सेट्स पर सुनिए अंजू बाला की आवाज़ में ये अगला लोकगीत।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आप सुन रहे थे पहाड़ों की गूंज। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए अब मिलकर सुनते हैं जय हिंद की माला।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज किया हमने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म से। आइए अब अगला देशभक्ति गीत सुनते हैं आनंद मठ फिल्म से।

श्रोताओं, अब हम आपको सुना रहे हैं भारतीय सिनेमा का एक अमर देशभक्ति गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म काबुलीवाला से, और इसमें आवाज़ दी है

श्रोताओं, अब जो हम देशभक्ति गीत आपको सुनवाने लगे हैं वो हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित देशभक्ति गीतों में से एक है। ये गीत पहली बार जिस फिल्म में आया उस फिल्म का नाम है हकीकत, और जिसे कैफी आज़मी ने लिखा था, मदन मोहन ने संगीतबद्ध किया था और मोहम्मद रफ़ी ने इसमें आवाज़ दी।

श्रोताओं, अगला देशभक्ति गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म उपकार से। इसे गाया है महेंद्र कपूर ने, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी और इसमें बोल दिए हैं गुलशन बाबरा ने।

103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं नाम फिल्म के गीत के साथ।

अनुराधा पोडवाल और मनहर उदास की आवाज़ें हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

सैनिक भाइयों, लीजिए अब सुनिए नाम फिल्म का गीत। आवाज है कविता कृष्णमूर्ति की, आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान।
7: सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: मेजर साहब, इस फिल्म का गीत अभी सैनिक भाई सुन रहे थे। मिली जुली आवाजें थी अरमान मलिक और श्रुति पाठक की। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: जतिन ललित के संगीत से सजा हुआ गीत अब पेश कर रहे हैं। गायक कलाकार है कुमार सानू और फिल्म है कभी हाँ कभी ना।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम सुनो सखी।

नमस्कार प्यारी सखियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो सखी और मैं हूं आपकी अपनी रेडियो सखी प्रवेश। साथियों, माँ और बेटी का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक है। माँ सिर्फ जन्म ही नहीं देती बल्कि अपनी सीख, संस्कार और अनुभवों से बेटी का जीवन भी संवारती है। आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे एक माँ की अपनी बेटी के नाम भावनाओं से भरी चिट्ठी, जिसमें प्यार है, चिंता है, दुआएं हैं और जीवन के अनमोल संदेश भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये भावनात्मक सफर इस प्यारे से गीत के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाँ तो सखियों, इस प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। जैसा कि कहा जाता है कि बेटियां घर की रौनक होती हैं। जब वो छोटी होती हैं तो माँ की परछाई बनकर घूमती हैं, और जब वो बड़ी होती हैं तो माँ की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती हैं। लेकिन समय के साथ बेटियां पढ़ाई, नौकरी, अपने किसी बिजनेस या फिर शादी करके घर से दूर चली जाती हैं। तब एक माँ के मन में बहुत सी बातें होती हैं जो वो अपनी बेटी से कहना चाहती है, पर हर बार वो कह नहीं पाती, और वही बातें कभी कभी एक चिट्ठी का रूप ले लेती हैं। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं एक माँ की अपनी बेटी के नाम चिट्ठी। मेरी प्यारी बेटी, ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ कि तुम जहाँ भी हो खुश हो, स्वस्थ हो। आज अचानक तुम्हारी बहुत याद आई, इसलिए सोचा कि अपने मन की बातें एक चिट्ठी में लिख दूँ। बेटी, याद है जब तुम छोटी थी और मेरी उंगली पकड़कर चलना सीख रही थी। तुम्हारे छोटे छोटे कदमों में मेरी पूरी दुनिया बसती थी। तुम्हारी पहली मुस्कान, पहला शब्द, पहला स्कूल का दिन, आज भी सब कुछ मेरी आंखों के सामने ताज़ा है। समय कितनी जल्दी बीत जाता है। कल तक जो नन्ही सी गुड़िया मेरी गोद में खेलती थी, आज वो अपने जीवन को बखूबी आगे बढ़ा रही है। बेटी, जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाइयां हासिल कर लो, लेकिन अपने संस्कार और अपनी सादगी कभी मत छोड़ना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। याद रखना, दुनिया में हर किसी को खुश करना संभव नहीं होता, इसलिए दूसरों की अपेक्षाओं से पहले अपने मन की आवाज़ सुनना सीखो। अब सखियों, आगे चिट्ठी में बेटी के लिए सीख है, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक प्यारा सा गीत है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: सखियों एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम सुनो सखी में, जहां आज हम पढ़ रहे हैं एक माँ की अपनी बिटिया को लिखी गई चिट्ठी। बिटिया जीवन में कभी भी कठिनाइयों से मत घबराना, संघर्ष जीवन का हिस्सा है। जब जब रास्ते मुश्किल लगें ये याद रखना कि तुम्हारी माँ की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हार मिल जाए तो निराश मत होना क्योंकि हार हमें आगे बढ़ना सिखाती है, और जब सफलता मिले तो विनम्रता बनाए रखना क्योंकि फलदार पेड़ हमेशा झुकता है। जब किसी की मदद करने का अवसर मिले तो पीछे बिल्कुल मत हटना, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सुनो मेरी प्यारी गुड़िया, जीवन में कभी भी कठिनाइयों से मत घबराना, संघर्ष जीवन का ही हिस्सा है। जब जब मुश्किलें लगे ये याद रखना कि तुम्हारी माँ की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हार मिल जाए तो निराश मत होना क्योंकि हार हमें आगे बढ़ना सिखाती है। जब सफलता मिले तो विनम्र रहना क्योंकि आपको पता है विनम्रता जो होती है वही हमें आगे लेकर जाती है। जब किसी की मदद करने का अवसर मिले तो भी आप पीछे मत हटना, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मेरी लाडली, रिश्ते बहुत अनमोल हैं, इन्हें समय और प्यार दोनों ही देना चाहिए। अब देखो अपने परिवार का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना और अपने परिवार का मिलजुल करके रहना, छोटों को स्नेह देना, यही

अच्छा खाना पीना, पर्याप्त आराम करना और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। याद रखना, स्वस्थ शरीर और शांत मन जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। विवाह, परिवार और जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी पहचान को भी जीवित रखना। बिटिया, कभी कभी घर का कोना तुम्हें याद करके मुस्कुरा देता है। तुम्हारा कमरा, तुम्हारी किताबें और तुम्हारे बचपन की तस्वीरें सब तुम्हारी याद दिलाती है। जब भी तुम्हारी आवाज़ सुनती हूँ तो लगता है जैसे घर फिर से खिल उठा हो। तुम चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो जाओ, मेरे दिल से कभी दूर नहीं हो पाओगी। माँ का दिल हमेशा अपनी बेटी के लिए ही धड़कता है। बिटिया, मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि तुम अपने दम पर आगे बढ़ो। ऐसा कोई काम ना हो जो तुम्हें ना आता हो। तुम हर अपना काम खुद कर सको, तभी मैं तुम्हें हमेशा हर काम सीखने को कहती थी। और आज मुझे इस बात पर गर्व भी है कि आज मेरी बेटी सबसे आगे निकल गई है। तेरी इस कामयाबी को देखकर मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ, वरना मुझे सबसे ज़्यादा चिंता इसी बात की थी कि जब मैं तुमसे दूर हो जाऊँगी, कहीं तुम अपने काम पर निकल जाओगी तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। लेकिन अब तुम्हारे बढ़ते हुए कदमों को देखकर मैं बेफिक्र हो गई हूँ। ईश्वर तुम्हें हर खुशी दे। तुम्हारे जीवन में सफलता जो है वो तुम्हारे कदम चूमे, तुम्हारी राहों में आने वाले हर मुश्किल आसान हो जाए। तुम हमेशा मुस्कुराती रहो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। माँ की दुआओं का असर कभी कम नहीं होता। दूर रहकर भी बेटी का गम दूर नहीं होता। रिश्ता ये ऐसा है जो दिल से जुड़ा रहता है। फासलों से कभी इसका प्यार कम नहीं होता। मेरी लाडो, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी खुशी होगी, कभी कठिनाइयाँ भी आएंगी। ऐसे समय में घबराना नहीं, हर रात के बाद सुबह आती है। अपने आत्मविश्वास को कभी कम मत होने देना। मुझे पता है कि तुम मजबूत हो, लेकिन मजबूत लोगों को भी कभी कभी सहारे की ज़रूरत हो जाती है। जब भी मन उदास हो, याद रखना कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। चाहे दूरी कितनी भी हो, मेरी दुआएं हर पल तुम्हारे साथ है। और हाँ, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। अगर रास्ता कठिन लगे तो थोड़ा रुक जाना, लेकिन आगे बढ़ना कभी मत छोड़ना। तुम्हारी सफलता मेरा सबसे बड़ा गर्व है। आज इस चिट्ठी के माध्यम से मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम जहाँ भी रहो, जैसी भी परिस्थिति में हो, अपने दिल से प्रेम, विश्वास और उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना। मेरी हर प्रार्थना में तुम्हारा नाम शामिल है। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन की हर खुशी दे। बहुत सारा प्यार और ढेर सारे आशीर्वाद। तुम्हारी माँ। ये तो थी सखियों माँ की चिट्ठी अपनी बेटी को, और ये सॉन्ग है आप सभी के लिए।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: सखियों समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन माँ और बेटी का रिश्ता कभी नहीं बदलता। ये रिश्ता विश्वास, अपनापन और निस्वार्थ प्रेम की मजबूत डोर से बंधा होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने रिश्तों को समय देना भूल जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हमारे अपने लोग और उनके साथ जुड़े भावनात्मक रिश्ते ही होते हैं। माँ के कुछ शब्द, उसकी एक सलाह और उसका एक आशीर्वाद कई बार हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। माँ की ये चिट्ठी सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं, बल्कि हर उस बेटी के लिए है जो अपने जीवन में आगे बढ़ रही है, सपने देख रही है और उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। ये संदेश हर माँ का संदेश है जो अपनी बेटी को खुशी, सुरक्षित और सफल देखना चाहते हैं। माँ की यही कामना होती है कि उसकी बेटी जहाँ भी रहे जीवन में हमेशा प्रेम, सम्मान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। इसी भावनात्मक संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से विदा लेने का समय आ गया है। उम्मीद है माँ की चिट्ठी बेटी के नाम विषय पर आधारित ये प्रस्तुति आपके दिल को छू गई होगी और आपको अपने रिश्तों की अहमियत का एहसास दिलाया होगा। अंत में माँ के चरणों में नमन करते हुए यही कहना चाहेंगे, माँ का प्यार वो छांव है जो जीवन की हर धूप में सुकून देता है और माँ का आशीर्वाद वो शक्ति है जो हर कठिन राह को आसान बना देती है। इसी संदेश के साथ आपसे अनुमति चाहती हूँ और चलने से पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। फिर मुलाकात होगी सुनो सखी के एक और नए प्रेरणादायक अंक में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार सखियों।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर का 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़पुर गाँव पहुँच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गाँव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा हो उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियाँ पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री

फिल्म दर्द से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में नक्श लालपुरी ने इसे लिखा और खयाम का संगीत था। बारिश बरसात से जुड़े आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कल तो हमारे यहाँ इतनी रिमझिम बारिश हुई, सुबह 8 से 10 तक मूसलाधार वर्षा हुई और पानी चारों तरफ भर गया। एक तरह से रेनी डे ही हो गया और कोई कहीं ऑफिस ही नहीं जा पाया। अच्छा है ना, आपको छुट्टी मिल गई इसी बहाने। एक और श्रोता लिखते हैं कि जैसे ही ये पहला गीत बजाया हमने, वैसे ही बहुत मज़ा आ गया क्योंकि रिमझिम से यही गीत उन्हें सबसे पहले याद आता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, इसी गीत पर पिछली बारिश के दिनों में हम मुंबई आए हुए थे। मरीन ड्राइव और समंदर किनारे में और मेरी धर्मपत्नी एक छाता लेकर चल रहे थे। बारिश हो रही थी और इस गीत पर बेटी ने वीडियो भी बनाया था और हमारी हाइट भी लगभग वैसी है जैसी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी की है। जी हाँ, ये छोटे छोटे से पल हमेशा याद रहते हैं और कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाना, फ़ोटोज़ खींचना, कहीं ना कहीं ये याद बहुत ही मीठी यादें रहती है और ऐसा ज़रूर करना चाहिए जब भी वक्त मिले। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मंजिल फिल्म का गीत बजाकर बस एक आस जगा रही है, एक आस जग रही है। यहाँ पर 44 डिग्री तापमान में झुलस रहे हैं और आसमान देखते हैं, बादल तो नहीं दिख रहे, बस आग बरस रही है। कहाँ से आपने ये मैसेज संदेश भेजा है हमें ये भी लिखिए और वहाँ का मौसम कैसा है हमें ये भी लिखिए। एक और श्रोता करते हैं, लिखते हैं कि बूंदों से भिगोने वाली शानदार गीत से आपने आरंभ किया है और ये विविध भारती का बहुत ही फेमस गीत है, हमेशा बजता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश हो या ना हो, लेकिन ये गीत सुनते ही बारिश के बूंदों से हम भीग जाते हैं। एक और श्रोता हमारी लिखते हैं कि आज तो मौसम और प्रकृति से संबंधित विषय पर ही चर्चा होगी और इन्हें लगता है कि बारिश, जमीन, खुशी, अपनापन ये विषय हो सकते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि बचपन में गांव में जब वे थे तो पहली बारिश में खेतों से उठती सौंधी खुशबू मदमस्त मादक माहौल बना देती थी। जी हाँ, ये सौंधी खुशबू बहुत कुछ याद दिलाती है। तो आप मुझे लिख भेजिए कि आप कहाँ से हमें संदेश भेज रहे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, बारिश हुई है, कुछ छींटे बरसे हैं या फिर कैसा तापमान है, और आपकी बारिश से जुड़ी यादें ज़रूर मुझे भेजिए। लेकिन साथ ही साथ कई यादें बहुत अच्छी भी होती है और कई यादें थोड़ा सा परेशान भी कर देती है, तो आप इस तरह के किस्से भी लिख सकते हैं मुझ तक।

अमित कुमार की आवाज में गीत तेरी कसम फिल्म से आनंद बख्शी ने लिखा, आर डी बर्मन का संगीत था। और आपके बारिश में भीगे खत मुझ तक पहुंचे हैं, या यूं कहें मैसेजेस पहुंचे हैं, डिजिटल खत कह सकते हैं इसे, जो संदेश आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरती बूंदों और मिट्टी की सौंधी महक के बीच बारिश में हुई वो हमारी पहली मुलाकात आज भी जहन में ताज़ा है। अचानक आई तेज़ बौछार से बचने के लिए हम दोनों एक ही छोटे से शेड के नीचे आकर खड़े हुए थे, और एक तरफ आसमान से बरसता पानी था, दूसरी तरफ हमारे बीच की वो अनकही झिझक। हवा के ठंडे झोंकों के साथ जब हमारी नज़रें मिली तो बिना कुछ कहे ही एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस हो गया। बहुत ही खूबसूरती से आपने उस मुलाकात को लिखा है, और सचमुच एक कहानी जो है वो नज़र आ रही है। इस कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है, बहुत ही खूबसूरत संदेश है ये। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आजकल बारिश सिर्फ नाम की होती है, रिमझिम बारिश नहीं होती, एक झटके में आंधी तूफान के साथ आती है और चली जाती है। हमारे श्रोता एक और हैं जो लिख रहे हैं कि ये कागज़ की कश्ती, ये बारिश का पानी, जब भी बारिश की बात आती है तो कागज़ की कश्ती चलाने का बचपन में अपना एक महत्व रहता था, वो उन्हें याद आता है। और गज़ल सुनना चाहते हैं, देखते हैं आज की लिस्ट में क्या क्या गीत शामिल हैं। एक और श्रोता हमारे हैं जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम सफ़र में चल रहे हैं, बेटी कार चला रही है और हेडफोन से सुरीला सफ़र का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक श्रोता अपनी परेशानी, अपनी चिंता यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग ना जाने किस किस चीज़ की भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, और ऐसे में हमारे प्राण अटक जाते हैं। कई सालों बाद ऐसे होने जा रहा है और बरसात बहुत कम हो रही है, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और ये जो मानसून अटका पड़ा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इससे खेती को बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ेगा और न जाने क्या होगा। देखिए, कुछ चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए भगवान के ऊपर, है ना, बस जैसे जो आ रहा है उसे उसी तरीके से उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बस यही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं सूरत गुजरात से, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बारिश नहीं हुई है और ऊपर से चिलचिलाती गर्मी है, आपके बारिश के गाने अलग हैं, तो अब हम क्या करें। आप गीत सुनिए और आनंद लीजिए। हमारे को श्रोता कहते हैं कि मैं नागपुर महाराष्ट्र से लिख रहा हूं और यहां तक अभी बारिश का लेश मात्र स्पर्श तक नहीं है, मानो आसमान से आग बरस रही है। एक और श्रोता हमारे बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखते हैं कि एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा सा जवाब आया अभी, बहुत ही खूबसूरत। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और ये जो बारिश का मौसम है जिसने हमें दीवाना बना रखा है, उस पर ये गीत।

ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है और ये बारिश भी दीवानी लग रही है क्योंकि हमें बहुत सारा इंतजार करवा रही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पुणे में तो अब तक बारिश का नाम ही नहीं है और बाहर चिलचिलाती धूप है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही एक दूसरे श्रोता लिखते हैं कि मौसम चाहे कैसा भी हो, सुरीला सफ़र में जो मौसम होता है वही आसपास हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे हैं जो लिखते हैं कि बारिश के दिनों में मेरी बेटी और मेरी देवरानी की बेटी दोनों छोटी थी, दोनों हाथ पकड़कर छत पर जा रही थी, उनको बारिश में भीगना है पर सब उनको मना कर रहे थे। वो छाता लेकर बड़ा सा और भीगती गई और बहुत देर तक आनंद लेती रही और थोड़ी देर के बाद छतरी बंद करके खूब भीगी और फिर खूब मज़े किए। ये बचपना उनका देखकर हम सब हंस दिए। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं जम्मू कश्मीर के पुंज से लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना है, बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, लेकिन तापमान 27-28 के बीच ही रहता है। कुल मिलाकर प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं। हमारे एक और श्रोता है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं। जाने कैसी ये बारिशों की मनमर्जियाँ हैं, कहीं जमकर बरसना कहीं बस अर्जियाँ हैं, है बेबस सब इनके आगे। मेरे गांव के आसमां से यूं तो रोज गुजर रहे हैं बिना बरसे ही बादल, न जाने कैसी ये बारिशों की खुदगर्जियां हैं। बहुत ही खूबसूरत संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं कि अभी तक संदेश नहीं लिख पाए क्योंकि कहीं बाहर थे और अभी घर पहुंचे हैं, अभी माँ ने भोजन दिया है और साथ ही साथ संदेश भी लिखेंगे। साथ ही एक और श्रोता है वो लिख रहे हैं कि मैं गा रहा हूँ, मेरी श्रीमती जी गा रही हैं, रेडियो के सभी श्रोता गा रहे हैं, विविध भारती गा रही है और ये सुहाना सफ़र में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता है वो अयोध्या से हमें संदेश भेज रहे हैं कि यहाँ पर तापमान चढ़ा हुआ है, मई में एक दो बार बारिश हुई, जून का 20 दिन इंतज़ार में गुजर चुका है लेकिन बारिश नहीं हो रही है।

कभी कभी एक दो बार आंधी की कुछ फुहारे पड़ी है जो न के बराबर है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि लव स्टोरी फिल्म से ये जो गीत उन्होंने सुना, इसमें जब ये रिलीज हुई थी उसके बाद नायक और नायिका की लोकप्रियता कुछ इस कदर बढ़ चुकी थी, इतने लोकप्रिय हो गए थे वो, ऐसा जादू चल गया था कि लड़का लड़की शब्द आम बोलचाल भाषा का हिस्सा बन गया था। और ये बहुत ही खूबसूरत गीत उन्हें लगता है उस दौर की मासूम मोहब्बत और कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर जाता है। हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये गीत बहुत ही पसंद आ रहा है उन्हें, और अभी उनके शहर में बारिश नहीं आई है, बारिश के गीत तो बहुत सारे हैं और कुछ गीत उन्हें याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए जो हम आपको सुनवा रहे हैं और आनंद लीजिए इस प्रोग्राम का जिसका नाम है सुरीला सफ़र।

मैंने प्यार किया, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत। असद भोपाली ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत था। हमारे श्रोता लोग जो हैं वो हमें मौसम के बारे में बता रहे हैं। जालंधर सिटी में तापमान 37 डिग्री है इस वक्त। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि मेरे बेटी, दामाद, बेटा और नाती वैष्णो देवी घूमने गए हैं और सूचना मिली है कि वहाँ का मौसम बहुत ही हसीन, सुंदर और ठंडक से भरा हुआ है। जी हाँ, वहाँ पर गर्मी के वक्त भी बहुत अच्छा मौसम होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चिलचिलाती धूप में बारिश के गाने सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे फिजिक्स के एग्ज़ाम में केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए हों। हमारे एक श्रोता ने अपना किस्सा साझा किया है कि धुआंधार बारिश में एक बड़ी ही दर्दनाक घटना हो गई थी। वो नए नए डाक विभाग में सिलेक्ट हुए थे और नासिक शहर से थोड़ी दूरी पर एक गांव में उन्हें जाना था। बाइक से अप डाउन करते थे, बीच में एक नदी थी जिस पर एक पुल हुआ करता था और बारिश के दिनों में ऑफिस की छुट्टी होने पर वो निकल पड़े। ऑफिस की छुट्टी होने पर, अच्छा, जब ऑफिस ख़त्म हुआ तो निकल पड़े और ज़ोर से बारिश हो रही थी और पुल पानी पर चढ़ चुका था और ऐसे में जब वो क्रॉस करना चाह रहे थे उसे तो बहाव इतना तेज़ आया कि बाइक समेत पानी में धकेल दिया गया पानी के बहाव ने उनको। और गनीमत है कि अच्छा तैराक होने के नाते वो किनारे तक पहुँच गए लेकिन बाइक बह गई। जी हाँ, ये परेशानी तो होती ही है लेकिन अच्छी तैराकी ने आपको बचा लिया। और सचमुच कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर इंसान को सीखना ज़रूरी होता है और होना चाहिए, शौक के तौर पर भी और एक पैशन भी होता है जो ऐसी ऐसे जब सिचुएशन आती है तो ऐसे में हमको बचा भी लेता है। एक और श्रोता है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है कि शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। अहमद फराज की लिखी पंक्तियां हैं ये। एक और श्रोता है, वो कहते हैं कि 10 गीतों की लिखी हुई इबारत में से 8वें नंबर पर ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गीत में लता मंगेशकर ने ये पगला है, इन शब्दों को बहुत ही अलग अलग तरीके से गाया है और गौर से सुनने लायक है। जी हाँ, अजमेर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि बारिश तो नहीं है, रिमझिम बारिश, हल्की फुल्की बारिश ही हो रही है और काले बादलों का समा है, आसमान में बन रहा है और थोड़ी बहुत खुशी आती है पल भर की लोगों के चेहरे पर कि बारिश होगी लेकिन काले बादल टाटा बाय बाय करते हुए निकल लेते हैं। इंदौर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गाने सुनने के लिए बादल आ गए हैं, सुबह धूप थी लेकिन अभी अचानक मौसम में बदलाव आ गया है और ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारा मौसम, हमारे जो प्रोग्राम है वो सुन रहा है और इसीलिए तब्दीली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेताब से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आर डी वर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे हमसफर के साथ में पहली बारिश बाराखंबा गया था और वहां दोनों भीग गए थे। दोनों ने एक साथ चाय पी और सचमुच ही वो पहली बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। अभी उनकी हमसफर उनके साथ नहीं है लेकिन विविध भारती का साथ सदैव ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि धूप ने धरती को कितना तपाया है, अब हर नज़र ने बादलों को बुलाया है। खंडवा की राहों में बस यही अरमान है, बरसे मेघ झूम कर, यही सबका इंतज़ार है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। सुरीला सफ़र का अंदाज बहुत कुछ बयां कर रहा है। इस खूबसूरत गाने के साथ शुरू हुआ आज का कार्यक्रम। सचमुच बारिश आने वाली है और हमारे यहाँ तो पहली बारिश हो चुकी है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है और प्रकृति को झूमते हुए देख मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और ये हमें संदेश भेज रहे हैं इच्छावर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश का। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश से मच्छर बहुत आते हैं रात को और दिन में मक्खियाँ, और दोनों में कंपटीशन लगा हुआ रहता है और इंसानों को परेशान करने का, तो इन सभी से ज़रूर बचें। बिल्कुल, जो भी ज़रूरी एहतियात है उसे बरतें और ज़रूर ज़रूर बचें इन सब चीज़ों से, क्योंकि बारिश तो है ही लेकिन साथ में बीमारियाँ भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा आती है, तो अपना ध्यान रखें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के जो गीत हैं ये लोगों को सुकून दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं ऐसा उन्हें लगता है क्योंकि गीत उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि भीगना तो तय है, चाहे बारिश में हो या गर्मी में। अभी दुकान पर काम करते करते हमारी बातें सुन रहे हैं वो, और बाहर घने बादल छाए हैं, दुकान के अंदर पसीने से भीग रहे हैं वो। 2019 की एक बात कहते हैं एक श्रोता, और उन्होंने लिखा है कि अगस्त महीने में पटना में इतनी बारिश हुई थी कि पूरा पटना बारिश से डूब चुका था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हुई वो पानी पीने की हुई। पीने का जो पानी था उसकी बहुत दिक्कत हुई, वो नहीं मिल पा रहा था और जहाँ तहाँ कैसे करके इंतज़ाम किया गया मोहल्ले में, और कोई गाड़ी भी नहीं आ पा रही थी उस वक्त। तो ऐसे में ये कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी देती है। जी हाँ, इन सब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश के फुहारों के साथ हंसी के सुरीले फुहारे तब निकले थे जब साथ में मेरी हमसफर थी और पैदल चलते हुए फोल्डिंग छतरी तेज़ हवा के कारण आधी ऊपर की तरफ हो गई थी। हम भीग भी रहे थे और हंस भी रहे थे। बहुत ही खूबसूरत संदेश और अब ये गीत इस फहरिस्त में।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत बीवी हो तो ऐसी इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इसके साथ ही हम बढ़ चले हैं इस प्रोग्राम की समाप्ति की ओर। आपके मैसेजेस मुझ तक बहुत से आए हैं, मैंने कोशिश की है कि सबके मैसेजेस पढ़ूं, सबके संदेश पढ़ूं, लेकिन हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक बार ओले बरस रहे थे, साइज भी उनका ठीक ठाक था, फ़ोन से वो पिक ले रही थी और उनकी गर्दन पर एक ओला आकर गिरा जो कि बहुत पेनफुल था। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि उन्हें अपने जीवन साथी के साथ बाइक पर बारिश में भीगते हुए घूमना बहुत पसंद था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आपके गीतों के साथ बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यहाँ पर बारिश भी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश है। और लेकिन अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। आपने आज का ये सफ़र तय किया अनुराधा के संग। इजाज़त चाहती हूँ इस प्रोग्राम से जिसका नाम है सुरीला सफ़र।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिलेंगी विवाह पर। एक बिटिया घर में जन्म लेती है और धीरे धीरे बड़ी होती है। माता पिता का दिल हर मोड़ पर उसकी बलाएं लेता है। छोटे छोटे हाथों से रोटी बनाती बिटिया, गुड़ियाओं से खेलती बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बचपन की पायल की वो छुन छुन धीरे धीरे लुप्त हो जाती है और बिटिया के विवाह का समय आ जाता है। जिन गालों में अब तक दूध का उजाला भरा था, अब सिर पर चुनर डालते ही वो गाल सुर्ख लाल हो जाते हैं। सजती संवरती दुल्हन रस्म दर रस्म किसी और की होती चली जाती है। माता पिता

पिता के मन में अनेकों सवाल उभरने लगते हैं कि नया घर हमारी बिटिया को उतने ही प्यार से तो अपनाएगा ना, लाड़ों का वर ढूंढने में हमने कोई कमी तो नहीं रखी ना, हमारी बिटिया खुश तो रहेगी ना। ऐसे तमाम सवालात के बीच बारात आ जाती है।

विवाह के समय लोग कई सारी तस्वीरें खींचते हैं, पर माँ पिता और दुल्हन के मन की तस्वीर अगर कोई ले पाता तो जान जाता कि उनके मन में कितनी उथल पुथल चल रही है। कहीं उम्मीद की धूप है तो कभी अनजाने भय का कोहरा, कभी भीगी भीगी से जुदाई की फुहार है तो कभी आंखों में नमी, कभी अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करते माता पिता कई सवालों से घिरे होते हैं। इन तमाम बातों के बीच बिटिया नए घर के लिए विदा होती है। जाते समय आशीष की पोटली भी उसके साथ जाती है, जिसमें होती है कई सारी सीख और नसीहतें। उस घर को अपना बनाने की सीख, मान और प्रतिष्ठा को सहेजने की सीख, सबको अपना बनाने की सीख। भावों की लहरों पर सवार होकर वो बाबुल का घर छोड़ देती है।

विवाह यानी एक जीवन का प्रारंभ, एक नया संसार। ये जितना स्त्री के लिए नया है उतना ही पुरुष के लिए भी होता है। दोनों के मन में कई सपने और कई अपेक्षाएं होती है। शादी के बंधन में दो परिवारों का मिलन होता है। खुशहाल शादीशुदा जीवन के लिए सभी के स्नेह और सामंजस्य की ज़रूरत होती है। ये बंधन बना रहे और आगे चलकर सुखद परिणाम दे, इसके लिए घर के अन्य लोगों का सहयोग भी अपेक्षित होता है। नहीं तो ये बंधन टूटने में देर नहीं लगती। समझदारी और सहजता के साथ साथ सात फेरों के इस बंधन को प्रेम से लबरेज रखा जा सकता है। हाँ ये संभव है, हाँ ये संभव है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल

0: डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहाँ प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उड़ीसा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा उड़ीसा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
3: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ

0: इसके बाद गृह मंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार NEET UG पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में CCTV निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक

0: योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण,
4: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जब जब फूल खिले फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू

0: गया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

गीता दत्त की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे प्यासा फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज थी। आप इस वक्त सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में गीत आप मधुमती फिल्म से सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मेरे महबूब इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: रहे हैं विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: विविध भारती मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
3: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। पहली पेशकश आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। आंखें फिल्म से हमने से लिया है, रवि का संगीत है, साहिर लुधियानवी ने से लिखा।

0: एनटीए ने एक वक्तव्य में कहा कि पुनः परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में संचालित की जाएगी। 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। इधर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कांगड़ा जिला में 12 परीक्षा केंद्रों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मचारियों के साथ इस बार आईटीबीपी की सेवाएं भी ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे और जैमर भी लगाए जाएंगे।
1: कल नीट का जो री एग्जाम होने वाला है जिला कांगड़ा में 12 सेंटर्स में होने वाला है, तो उनसे रिलेटेड जो हमारी तैयारी है पर की पूरी एंड टू एंड प्रोसेस को हमने चेक कर लिया और जहाँ जहाँ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वो भी हमने डिप्लॉय कर एग्जाम सेंटर्स पे जैमर्स की हमने वहाँ पर इंस्टॉलेशन करवा दी है ताकि एग्जाम कंडक्ट कराने में किसी तरीके की कोताही किसी तकलीफ से ना आए।
0: कल दुनिया भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है, जो सभी आयु वर्ग के लिए योग के महत्व पर बल देता है। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के समन्वित प्रयासों से इस वर्ष विश्व भर में लगभग 2500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए गए। अब आप सुनेंगे शिमला जिले की चिट्ठी। लेखक हैं योगराज शर्मा और वाचक हैं शशि चौहान।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने 1 जून को लोकभवन शिमला से ऑल इंडिया एनसीसी माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन दल को कुल्लू की माउंट देव टिब्बा के लिए रवाना किया। 6001 मीटर ऊंची चोटी फतह करने के लिए देशभर से चुने गए 24 कैडेट्स का ये दल पीर पंजाल रेंज जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे अभियान युवाओं में साहस, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की भावना मजबूत करते हैं। 25 मई को मनाली में हुए कठिन ट्रायल के बाद 12 सीनियर डिवीजन और 12 सीनियर विंग मिलाकर कुल 24 कैडेट्स चुने गए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने छोटा शिमला से हाईकोर्ट सील्ड सड़क पर अपने वाहनों की आवाजाही पर लगाई जा रही रोक का 2 जून को विरोध जताया। इसके विरोध में अधिवक्ताओं ने पहले मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओकओवर के बाहर प्रदर्शन, उसके बाद सचिवालय का घेराव कर चक्का जाम किया और फैसले को वापिस लेने की मांग की। 3 घंटे तक प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के साथ वकीलों की वार्ता हुई, जिसमें समाधान निकालने के लिए एक कमेटी का गठन करने पर सहमति बनी, जिसके बाद सड़क यातायात के लिए बहाल हुई। नशे के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी व जलवायु परिवर्तन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, हिमाचल पुलिस व जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश के सहयोग से एंटी चिट्टा व स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन 2026 का आयोजन किया गया, जिसको राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विजेताओं व प्रतिभागियों को सम्मानित किया। शिमला में 6 से 10 जून तक 71वीं राष्ट्रीय नाटक व नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव में 12 से ज्यादा राज्यों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में देशभर से कलाकार, नर्तक, अभिनेता, निर्देशक और रंगमंच समूहों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और उभरते कलाकारों को राष्ट्रीय मंच देना है। शिमला जिला के पंचायती राज संस्थाओं के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 6 जून को शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला परिषद शिमला के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित बचत भवन में आयोजित किया गया। जिला की 13 पंचायत समितियों में संबंधित एसडीएम व तहसीलदारों को शपथ के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया। इन अधिकारियों की निगरानी में नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल का 8 जून से आगाज हुआ जो 12 जून तक चला। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया, जबकि समापन समारोह की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव एडवेंचर और रोमांच से भरपूर रहा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपने 2 दिवसीय प्रवास के तहत 9 जून को शिमला स्थित होटल पीटरहॉफ पहुंचा। प्रवास के प्रथम दिन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने की। बैठक में निगम में आरक्षण नीति के क्रियान्वयन तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। 9 जून को हिमाचल कांग्रेस में अनुशासनहीनता को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई। कृषि मंत्री चंद्र कुमार के बेटे और पूर्व विधायक नीरज भारती को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। शिमला के राजीव भवन में हुई अनुशासन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम देश के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल दर्ज होने पर शिमला के राम मंदिर में 10 जून को विशेष हवन का आयोजन किया गया। इस मौके पर नाचन से भाजपा विधायक व उपाध्यक्ष विनोद कुमार ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए उनके स्वस्थ दीर्घायु और निरंतर राष्ट्र सेवा की कामना की। विनोद कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है जो देशवासियों के स्नेह और विश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार अंत्योदय के संकल्प को साकार करने की दिशा में काम कर रही है। विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। गरीब, किसान, महिलाएं और युवा इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।
3: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर के 1:03 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

सुरेश वाडकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म से। संतोष आनंद ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इसे सुनना चाहा था ककराला बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और समस्त परिवार ने। उल्लास नगर से

0: पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन ने जाखोद राजस्थान से, पूजा खटक बिमला देवी, शंभू दयाल खटक ने।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे याराना फिल्म से अनजान ने से लिखा राजेश रोशन का संगीत था। इसे सुनना चाहा था कपाई सालपुरा जिला 12 राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव श्रीमती प्रेमलता हिमानी हर्षिता और अभिषेक ने। जसपुर उत्तराखंड से रियाज हुसैन सिद्दीकी नजमा बेगम रियाज रिफाकत शमरीन परवीन और मोहम्मद रिहान माहिरा नूर ने इस गीत को सुनना चाहा था। गंगानगर बीकानेर से कैलाश सैनी गोविंदा और उत्तम सोनी।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे धरती फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इसे सुनना चाहा था रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी रवि और अक्षय शर्मा ने जालंधर से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता शर्मा और माया कुमार ने।

0: कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के इस फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम ने, अमर सिंहपुरा बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उनके परिवार ने, और भिलई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यहीं समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का हिंदी अनुवाद, मृत्युहीन प्राण। हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का पहला भाग।

0: सांझ होती जा रही है। इस पार्क में अकेले अकेले लगता है सचमुच बेंजामिन का सिर फिर गया है। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी गुप्त खबर है जिसे वो मुझसे ही भिजवाना चाहता है। आखिर ये गुप्त खबर हो क्या सकती है? अभी तक किसी का भी कोई पता नहीं, और मैं यह झूठ मूठ चली ही जाऊं अब।
1: जिनी।
0: हाँ?
1: जिनी।
0: कौन? बेंच।
1: खामोश। हाँ? आहिस्ता, इधर इस तरफ।
0: लेकिन
1: इस झाड़ी के पीछे।
0: आखिर मामला क्या है बेंच, इतना छिपा? मुझे तो डर लगने लगा है।
1: तुम्हारे डरने की कोई बात नहीं है जिनी, हमारे यहाँ पहुँचने की खबर पुलिस को पहले लग गई है, इसलिए प्रोग्राम में कुछ चेंज करने पड़े हैं।
0: बेंच, डर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है।
2: उस तरफ, उधर, जाओ आगे।
1: जिनी, तुम फौरन उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ।
0: अच्छा।
2: जुडू, भाई बात क्या है? इसी पार्क के पश्चिम वाले गेट की बाईं ओर उनकी मीटिंग होने की बात है। वक्त शाम के 4 बजे का था, पर अब तो सांझ हो चुकी है, कहीं कोई एक भी बदमाश नजर नहीं आया।
3: सर, फिलिप्स ने कहीं हमें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी?
2: नहीं, फिलिप्स गलत इन्फॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं है। मुझे लगता है जुडू, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है शायद उसकी भनक उन्हें पहले ही लग चुकी है। सच, इन्हें गिने कुछ काले कुत्तों पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके हैं। This disgraceful on our part.
3: उस बेंच पर कौन बैठा है? कोई लड़की है शायद, क्यों?
2: हाँ, वही तो देख रहा हूँ।
3: हाँ, बड़ी हिम्मत वाली मालूम पड़ती है छोकरी।
4: ए लड़की, यहाँ अकेली क्या कर रही हो?
2: लुक छिप कर कुछ प्यार मोहब्बत करने आई हो शायद? हाँ
0: नहीं नहीं, मतलब यूं ही जरा घूमने आई थी, बस मैं घर ही जा रही हूँ।
2: ठहरो।
0: हाँ?
2: कितनी देर से तुम यहाँ बैठी?
0: जी बस थोड़ी देर से, मतलब सांझ से।
2: सांझ से? बस जी थोड़ी देर से, और अब इस सांझ ठेले तक?
0: जी मैं घर जा रही हूँ।
3: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती देखी है?
0: मीटिंग? नहीं तो नहीं देखी।
2: मीटिंग मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जमात, और क्या।
0: नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा तो अब मैं चलूं?
2: हाँ हाँ, जाओगी?
0: जी।
2: जाओगी क्यों नहीं। अच्छा, क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो?
0: जी हाँ।
2: कविताएं पढ़ती हो? मान लो जैसे बेंजामिन मोलाइज की कविताएं पढ़ती हो?
0: हाँ पढ़ती हूँ, बहुतेरे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं।
2: उसे जानती भी हो?
0: बेंजामिन को? अब बेंजामिन को भला जानूंगी कैसे,
3: वो ऐसा कोई खास रिप्यूटेड कभी नहीं है शायद।
0: अच्छा तो अब मैं चलूं?
2: हाँ हाँ, जाओ।

0: मिस्टर थॉमसन, बेंजामिन मॉलेस क्या बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है?
1: आदमी के हिसाब से डेंजरस है कि नहीं, नहीं मालूम, बट हिज पेन, उसकी कलम बंदूक से भी ज्यादा खौफनाक है, और कविताएं तो जबरदस्त खतरनाक।
0: ओह।

0: मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, मृत्यु के अधरों छिपी है, सही शब्द नहीं सूझ रहा, मृत्यु के अधरों छिपी। माँ माँ
1: क्यों रे बेंट, क्या बात है, क्यों बुला रहा है?
0: माँ जल्दी से जरा इधर तो आना,
1: सूप उतार कर अभी आती हूँ, जरा रुक।
0: मुझे सही शब्द चाहिए ही, समय बहुत कम है, बस कुछ एक दिनों के बाद सोयोटो दिवस स्मरण का प्रोग्राम है, इसी बीच से प्रेस में भी देना है।
1: क्या बात है बेंच, क्यों बुला रहा था?
0: माँ सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये मृत्यु के अधूरों छिपी है के बाद क्या शब्द होगा?
1: इसके बाद क्या होगा, अरे किसका क्या होगा?
0: माँ सुनो ना, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, ये छिपी है के बाद क्या शब्द होना चाहिए?
1: मुझे नहीं मालूम, जाने क्या ऊटपटांग बके जा रहा है।
0: ऊटपटांग नहीं है माँ, सुनो, मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का, मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।
1: चुप कर चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं।
0: नहीं माँ, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत गले से अपनी आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया।
1: नहीं बेंच, ऐसी बातें मुंह से ना निकाल, देखता नहीं देश भर में दिन पर दिन कैसी कैसी घटनाएं घटती जा रही हैं।
0: मैं तो देश के बाहर नहीं हूँ माँ, घटनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें भी। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले मेरी कविता के लिए जरा शब्द तो बताओ।
1: कविता के लिए शब्द?
0: हाँ
1: अच्छी बात है, तो फिर अपनी लाइन और एक बार बोल।
0: सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, इसके आगे
1: मृत्यु के अधरों छिपी है श्वास जीवन की।
0: श्वास, कोई और शब्द बोलो माँ, कोई दूसरा शब्द बोलो ना।
1: संतरास।
0: संतरास, इस शब्द में जाने कैसी भीरुता मिश्रित नीचता की गंध है माँ, ये तो कायरों की निशानी है।
1: अधरों प्यास शब्द जोड़ता है, हाँ तो फिर इसे लिखो, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
0: ओ राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द है माँ, सच माँ, माँ हो माँ, तुम कभी बेंजामिन मलोयस की सचमुच की माँ हो, एक बहुत बड़ी कवित्री, बहुत बड़ी माँ।
1: अरे अब छोड़ भी, पागल कहीं का।
2: मासी,
0: जीनी,
1: आ बेटी अंदर आ जा। बता क्या खबर है, तेरे माँ बाप सभी अच्छे हैं ना?
2: हाँ मौसी, सभी अच्छी तरह से हैं। वो परीक्षा नज़दीक आ पहुँची है, तभी बेन से इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर को समझने के लिए आई हूँ।
1: अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ।
2: जी अच्छा।
0: जीनी, कौन सी परीक्षा तुम्हारे नज़दीक आ पहुँची है?
2: बहुत ही भयंकर परीक्षा बेंच, उसे अग्नि परीक्षा भी कह सकते हो।
0: अच्छा होगी कोई। पर इतना जरूर है कि तुम्हारी पहेलियों को समझ पाना मेरे लिए टेढ़ी खीर है। खैर इस कविता को सुनो। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की, गीत जीवन का सुनाने की लिए अभिलाष, संधि क्षण में पहुंचकर वे हुए घोर हताश, क्रूर निर्मम दानवी निर्लज्ज पंजों में, जकड़कर सीसा उंडेला गर्म आंखों में, यह नहीं प्रति

0: वाद या संवाद की वेला, ये असह्य अन्याय हमने किस कदर झेला। रक्त रंजित राह पर बढ़कर करो जय घोष, सुप्त मन में रह न जाए उबलता आक्रोश। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
1: वाह वाह, क्या बात है बेंच, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यू आर नाउ अ पोएट एंड इन टाइम यू विल बी अ ग्रेट पोएट बेंच।
0: हाँ, वो पढ़ते हैं मेरी कविताओं को, इसीलिए तो मुझे छुप छुप कर भागते रहना पड़ रहा है।
1: हाँ
0: हाँ, हकीकत यही है। खैर, अच्छा बताओ, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ोगी?
1: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हूँ।
0: अरे, पढ़ने नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो?
1: किस लिए आई हूँ, क्यों आती हूँ, क्या तुम नहीं जानते?
0: नहीं,
1: कुछ भी नहीं समझते?
0: बताओगी नहीं तो समझूंगा कैसे?
1: सारी बातें मुंह से कहीं नहीं जा सकती बेंच, समझ लेनी पड़ती है। क्यों तुम्हारी बातें सुनने के लिए भागी चली आती हूँ? क्यों तुम्हारी कविताएं मुझे बेचैन कर डालती हैं? क्या तुम मेरी आंखों की भाषा पढ़ नहीं पाते?
0: जिनी, तुम्हारी दृष्टि मेरे सीने में एक अजीब लहर सी पैदा कर देती है, मेरी कविताओं को अनुप्रेरित करती है, पर केवल इस तरह की अनुभूतियों को लेकर झूठ मूठ समय बर्बाद करने का वक्त अभी नहीं है जिनी।
1: झूठ मूठ समय बर्बाद क्यों करेंगे बेंच? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे की अनुभूतियों को सच कहकर स्वीकार ही ना करें।
0: देखो, दिल की बात दिल में ही रहे तो ठीक है, क्या जरूरत है उसे बाहर सबके सामने खड़ी कर स्वीकृति जताने की?
1: बेंच,
0: तुम तो जानती हो मैं खतरनाक राहों का राही हूं, मेरी स्वीकृति का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त खतरे का बोझ लाद देना। मैं वैसा कतई नहीं करना चाहता जिनी।
1: बेंच, तुम्हारे लिए डर से दिन रात मेरा कलेजा कांपता रहता है, भारी बूटों की आवाज कानों में आते ही मैं चौंक चौंक जाती हूँ।
0: मेरे लिए तुम्हारी छाती डर से कांपती है, तभी तो मेरा सीना हिम्मत से फूल उठता है जिनी।
1: जरा सावधानी के साथ चला फिरा करो, भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तुम ही तो मेरी आंखें हो बेंच, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी बेंच।
0: जिनी, हाथ छोड़ो, शायद माँ आ रही है।
1: अब, अच्छा, तो मैं जा रही हूँ मौसी, अब मैं चलती हूँ।
2: लिखाई पढ़ाई हो गई?
1: अब, हाँ मौसी हो गई।
2: अरे, थोड़ी चाय तो पी कर जा।
1: नहीं, आज रहने दो मौसी, कुछ जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ।
2: बड़ी प्यारी लड़की है,

0: सर बहुत ही भला लड़का है। जहां तक मुझे खबर मिली है बेंजामिन मॉलियस जैसा लड़का उस मोहल्ले में दूसरा और कोई है ही नहीं। लिखाई पढ़ाई स्वभाव चरित्र।
1: विल यू स्टॉप टू डू?
0: यस सर, यस मिस्टर थॉमसन। मैं तो
1: कुछ नहीं जानते तुम। उसकी लिखी कविताएं पढ़ी हैं तुमने?
0: नहीं, पर मैं
1: कविताओं का हर शब्द एक एक बुलेट है और इन सब का इस्तेमाल किया गया है श्वेत सरकार यानी हम लोगों के खिलाफ।
0: पर बात ऐसी है सर कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है
1: सारी गलत है। बेंजामिन मोलाइज भला लड़का है, उन ब्लैक स्वाइनों के लिए, हमारे लिए नहीं। इस बात को याद रखो।
0: यस सर।
1: तुम्हें पता है हमारे सबसे ज्यादा वफादार इन्फॉर्मर फिलिप स्लेपी का इन लोगों ने ही खून किया है।
0: अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत? तब तो फौरन इनके खिलाफ कार्रवाई ना करने से दूसरों का मनोबल टूट जाएगा सर।
1: यस, चारों ओर से कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दो। कॉले कुत्तों का एक भी पिल्ला बच ना निकले।
0: ओके सर।
1: मेरा नाम थॉमसन है। स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थॉमसन द टेरर को

0: अलग कौन नहीं जानता।
1: हमारे लोगों पर हाथ उठाकर सोचा है बच निकलोगे बच्चों?
0: सारा कुछ जलाकर राख का डालूंगा। कमान चढ़ो।
2: यस सर।

0: जेम्स, इतनी रात में भला कौन आया होगा?
1: मैं तो तुमसे कहना ही भूल गया बापू, आज जोहान्सबर्ग गणतंत्र के फ्रंट की एक मीटिंग होगी यहाँ, लगता है वही सब आए हैं, देखता हूँ।
0: तो जेम्स तुम भी?
1: हाँ बापू, मेरे जैसे हजारों हजार लड़के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए जूझ पड़े हैं जिस स्वाधीनता की लड़ाई में, उस लड़ाई में मैं भी शरीक हूँ बापू। आइए आइए मिस्टर जैकब, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार मिस्टर खापड़कर।
2: नमस्कार।
1: बेंस, अंदर आ जाओ ना।
2: माँ, हम तुम्हारे वही बेटे हैं, इस बार जीवन की आशा को लौटा लाए हैं, अटल विश्वास का एक कमल खिलाया है माँ।

0: आज भी नहीं आया बेंच। आज 5 दिन होने को आए और बेटे को घर लौटने की फिक्र तक नहीं। इधर शहर भर में पुलिस वालों ने उथल पुथल मचा रखी है। ईश्वर जाने बेंच क्या करता है, क्या सोचता है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता।
1: मौसी, मौसी
0: जिन्नी, आओ बेटी, आओ इस कमरे में चलो, आओ बैठो।
1: बेंच की कोई खबर मिली मौसी?
0: अरे मुझे कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो तेरे भरोसे ही बैठी हूँ। कोई खबर मिली?
1: मुझे तो कोई खबर नहीं मिली,
0: पर क्या
1: न जाने वो पूछो।
0: जिनी बता बेटी, क्या खबर है मेरे लाल की, बेंच कहाँ है, कैसा है?
1: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, जरूर ठीक ठाक ही होगा। वो एक मीटिंग।
0: मीटिंग? किसकी मीटिंग?
1: अफ्रीका नेशनल कांग्रेस की गुप्त शाखा की एक मीटिंग है, शायद बेंच वहीं गया होगा।
0: ये मीटिंग कहाँ है?
1: अब ये तो नहीं मालूम मुझे मौसी।
0: मीटिंग, गुप्त समिति?
1: हाँ।
0: इधर उस पुलिस जासूस फिलिप्स के खून होने के बाद से भेड़ियों की नजरें चारों ओर घूम रही हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा।
1: जरूर अच्छा होगा, ठीक होगा मौसी, निश्चित रूप से सही सलामत होगा, उसे कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जरूर अच्छी तरह से होगा।

0: आज भी नहीं आया बेंच। आज 5 दिन होने को आए और बेटे को घर लौटने की फिक्र तक नहीं। इधर शहर भर में पुलिस वालों ने उथल पुथल मचा रखी है। ईश्वर जाने बेंच क्या करता है, क्या सोचता है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता।
1: मौसी, मौसी
0: जिन्नी, आओ बेटी, आओ इस कमरे में चलो, आओ बैठो।
1: बेंच की कोई खबर मिली मौसी?
0: अरे मुझे कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो तेरे भरोसे ही बैठी हूँ। कोई खबर मिली?
1: मुझे तो कोई खबर नहीं मिली,
0: पर क्या
1: न जाने वो पूछो।
0: जिनी बता बेटी, क्या खबर है मेरे लाल की, बेंच कहाँ है, कैसा है?
1: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, जरूर ठीक ठाक ही होगा। वो एक मीटिंग।
0: मीटिंग? किसकी मीटिंग?
1: अफ्रीका नेशनल कांग्रेस की गुप्त शाखा की एक मीटिंग है, शायद बेंच वहीं गया होगा।
0: ये मीटिंग कहाँ है?
1: अब ये तो नहीं मालूम मुझे मौसी।
0: मीटिंग, गुप्त समिति?
1: हाँ।
0: इधर उस पुलिस जासूस फिलिप्स के खून होने के बाद से भेड़ियों की नजरें चारों ओर घूम रही हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा।
1: जरूर अच्छा होगा, ठीक होगा मौसी, निश्चित रूप से सही सलामत होगा, उसे कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जरूर अच्छी तरह से होगा, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जरूर अच्छी तरह से होगा।
2: बापू दरवाजा जरा देर से खोलना।
3: अच्छा, आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ।
2: हैंड्स अप।
3: आप लोग
2: जुड़ो, अंदर देखो, ये जल्दी, क्विक, कहाँ है ये सब? तो आप ही जोसेफ पिस्से हैं?
3: जी हाँ सर।
2: ये कौन है? सर लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा?
3: जी जेम्स पिस्से।
4: वाले का दरवाजा खुला है, लगता है उसी ओर से भागे।
3: आखिर मामला क्या है सर, कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है।
2: हाथ नीचे कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। बताइए, अभी अभी पैरों में गोली खाकर जो

0: जरा बताइए तो सही, आपने अपने उस मेहमान का कहाँ चालान कर दिया?
1: जी
0: समझ तो रहे हैं, हम सब कुछ जान चुके हैं।
1: नहीं नहीं जी, मतलब हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी उधर।
2: हम लोग उसे बिल्कुल नहीं जानते सर।
0: मैंने तुमसे नहीं पूछा है। हाँ तो आप कहिए।
1: हाथ में बंदूक लिए एक अनजान आदमी अचानक घुस आया सर, उसने हमें डराकर जख्म पर पट्टी बांधने को मजबूर कर दिया।
0: फिर झूठी कहानी करने लगा।
2: सर ये आप क्या कर रहे हैं, एक बूढ़े आदमी को आप लोग क्या हैं?
0: यू रास्कल।
1: सर सर जेम्स मेरी एकमात्र संतान है, कहिए आप क्या जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं?
2: बाबू बाबू, तुम्हारे मुंह से राज की कोई बात निकलने पर भी ये हमें छोड़ेंगे नहीं।
3: इस काम लकी बिल्कुल खत्म कर डालूंगा।
0: ओप चुडो उसे मेरे पास दो। मिस्टर पित्से, एक से दस गिनने के बीच जो कुछ भी जानते हैं फौरन बता दीजिए, वरना मेरी छोटी सी नली का गरम सीसा जेम्स की खोपड़ी को छेद कर पार हो जाएगा। और
2: बाबू बाबू, एक जेम्स के मरने से हजारों हजार जेम्स पैदा होंगे, पर मैं विश्वासघातक का बेटा होकर जीना नहीं चाहूंगा बाबू, कभी नहीं कभी नहीं।
0: सोच लीजिए, तो फिर आप अपने खानदान के आखिरी चिराग की मौत की वजह खुद ही बन रहे हैं।
1: ये नहीं।
0: सर। वन टू थ्री फोर फाइव।
2: बापू दरवाजा जरा देर से खोलना।
1: अच्छा आता हूं आता हूं आता हूं।
0: हैंड्स अप।
1: आप लोग
0: जुड़ो अंदर देखो जल्दी क्विक। कहां है ये सब? तो आप ही जोसेफ पिस्से हैं?
1: जी हाँ सर।
0: ये कौन है सर? वो लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा?
2: जी जेम्स पिस्से।
3: शौले का दरवाजा खुला है, लगता है उसी ओर से भागे।
1: आखिर मामला क्या है सर, कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है।
0: हाथ नीचे कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। बताइए, अभी अभी पैरों में गोली खाकर जो छो, आप ही तो बताएंगे। पर हाँ सीधे सादे शब्दों में कहिएगा, कविता में नहीं। हमें ये सब पसंद नहीं है। अब आपको हमारे साथ सरकारी मेहमान होकर जाना होगा। जुड़ू।
4: यस सर।
0: जरा अच्छी तरह से सावधानी के साथ लेकर जाना। He's dangerous।
4: यस सर।

0: मृत्युहीन प्राण। अभी आप इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का ये हिंदी अनुवाद था। हिंदी अनुवादक थे दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ

0: कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आइए सुनते हैं इस गपशप का तीसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया। जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: सोया था नस नस में, अब ये जग गया, लहू मुलग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर दौड़ाती रहती है।

मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं। तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब

0: बना सकते हैं इसमें।
1: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
1: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी? तो फिर क्या किया आपने?

टेरेंस को गले लगाया। टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अब टेरेस हम वापस आते हैं उस डायस पर, आपके टीवी का जो डायस वहां हाँ। पे आप आपको जब बैठा हुआ देखते हैं हाँ। और जब वहां पे आपको बड़ी शुद्ध हिंदी में बात करते हुए देखते हैं हाँ। तो हमें लगता है कि यार भाई क्या है बात है, टेरेंस ने शायद हिंदी के लिए कुछ अलग से कोचिंग वोचिंग ली है शायद, तो ये हिंदी पे कुछ खास मेहनत की आपने और उसकी वजह?
0: आप चाहे उसे मजाक में ले लीजिए या जब बहुत पैसे मिलते हैं बोलने के लिए तो आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि आप उस कुर्सी पर बैठ के कुछ भी नहीं बोल सकते। और मुझे पता है कि अगर मुझे यही मौका मिला अंग्रेजी में बोलने का, अगर मैं उसका विश्लेषण करूं, डांस का विश्लेषण करूं, तो मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूं अंग्रेजी में, क्योंकि मैं अंग्रेजी में पला पड़ा हूं, मेरा एजुकेशन वैसा रहा है। तो जब मैं अपने क्लास में, जब मैं एज अ टीचर, मैं बहुत बारीकी में जाके देखता हूं और मैं नो बच्चों को बहुत डाइसेक्ट करता हूं, तब मेरी जबान फट फट फट फट करके चलती है और मैं बताऊँ कि ये सही नहीं, ये सही है, ये सही है, ये नहीं है, अब ये करना है, ये यहाँ पे सुधार लेके आना है। लेकिन वही चीज़ अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो मैं अटक जाता हूँ कि इसका शब्द क्या है। और मैंने लगा कि यार जो मैं बोलना चाहता हूँ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। और मुझे ये नहीं बोलना है कि मुझे आपका डांस अच्छा लगा, ये कौन कहता है, तुम जज हो भाई, तुम्हें उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, तुम्हें उसकी टेक्निकल चीज़ें बतानी पड़ेगी, और वो टेक्निकल चीज़ें मैं अंग्रेजी में जानता हूँ। तो फिर मैंने अपनी हिंदी को सुधारा, फिर बोला कि ये देखते हैं कि क्या है इसका शब्द, अगर मैं ये अंग्रेजी में बोलता, इसको मैं अनुवाद करता ओके हिंदी में, तो इसका अर्थ क्या निकलता। तो फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया कि ऐसा ऐसा हो, ये मैं बोलना चाहता हूँ अंग्रेजी में, तो फिर मैं इसको ट्रांसलेट करता था अपनी लिखता था, समझता था, क्योंकि मुझे पता है कि एक बच्चा जो हमारा डांस कर रहा है वो इतनी मेहनत कर रहा है और वो अपनी जान लगा रहा है, तुम ऐसे ही बोल नहीं सकते कि मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, ये अच्छा था, ये वो नहीं। आपको बताना पड़ेगा ऑडियंस को कि क्या क्या बारीकियां थी, ताकि लोग उसको एक अलग नजर से देखें
1: उस बच्चे को।
0: हाँ, तभी जाके हमारे बच्चों को वो रिस्पेक्ट मिलेगी।
1: जी बिल्कुल सही।
0: हम जज नहीं है, हम मेंटर है। मैंने कभी अपने आप को जज नहीं समझा, मैंने कभी समझा कि मैं मेंटर हूं, मेरा काम है आपको ये बताना कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और जो नहीं अच्छा कर रहे हो कैसे इसको सुधार सकते हो।
1: बिल्कुल सही।
0: उसका उपाय भी देना आपका फर्ज बनता है, अदरवाइज क्या अच्छा बुरा है, क्या गलती निकालना है, तो वो नॉर्मल ऑडियंस भी देख सकती है और बोल सकती है यहाँ पे इसने गलती कर दी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो विश्लेषण आपको करना है एक गाने के बारे में या इसके डांस के बारे में या इसकी टेक्निक या उसकी विधि क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे शब्द, अगर मैं कहूँ कि आपके डांस में आप बहुत क्विक हो, ये क्विक क्या है अंग्रेजी में, गलत है, ए वर्ड इज एजाइल। अभी एजाइल को क्या बोलूं? तो बोला कि एजाइल का वर्ड क्या है, चपलता। तो बोला कि आप बहुत चपल हो। तो वैसे फ्लेक्सिबिलिटी जो है, अब हमारा जो माध्यम है हिंदी माध्यम है, हमारा जो ऑडियंस है, हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी सिटी वाली ऑडियंस नहीं होती। मुंबई दिल्ली वाले देखते नहीं हमारे शो, जो हमारी शो देखते हैं वो बी टाउन या सी टाउन सिटीज से होती है, छोटे शहरों से। वहां पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेच, अगर मैं ये बोलूंगा तो वो कभी कभी समझ में नहीं आएगा, तो बात निकल जाती है, तो उसकी जो अहमियत है वो निकल जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? लचीलापन। तो वो शब्द मैंने इस्तेमाल करना लगा। और फिर मैंने बोला कि अच्छा ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन हमारे मेंटोरशिप में हमें अगर हमारे बच्चों को ऑडियंस पर लगाव

0: क्या ना तो टेक्निकल चीजें से नहीं होती है, उनके निजी जीवन में जो चल रहा है और कैसे उनकी परिस्थिति से वो जूझ कर निकल कर उभर कर आ रहे हैं, वो वाली चीज अगर मैं अपने ऑडियंस के सामने रखता हूं तब जाके ये शो बनेगा, लोगों में इंटरेस्ट आएगा, सिर्फ टेक्निकल चीजों से नहीं। तो मैंने अपनी हिंदी सुधारी ताकि मैं बच्चों के बारे में बोल सकूं अच्छा, ताकि वो लोगों तक पहुंचे, उनका काम लोगों तक पहुंचे। मेरी जिम्मेदारी है इज नॉट टू जज, मेरी जिम्मेदारी है कि जो काम बच्चों ने किया है वो लोगों तक सही मायने में पहुंचाए, और जो नहीं दिखता, क्योंकि डांस ना बड़े बड़े चीज़ें दिखती हैं, करतब दिखती हैं, लेकिन डांस में कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत सटल होती है, और वो सटल चीज़ें लोगों को दिखती नहीं है जब तक आप उनको बताओ कि नहीं, आप थोड़ा रिवाइंड करके देखिए यहाँ पे इस बच्चे ने एक हल्का सा एक यू नो अपने अपने एक शरीर के अंग से यहाँ से खेला है, उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। तो जब मैं बोलता हूँ तो लोगों को भी लगता है हाँ ये सही बात है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये सब कहना और वो बयां करना ताकि लोगों को और इंटरेस्ट आए। अगर आप अच्छा बोलते हो तो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, तो ये मेरे बच्चों के फायदे में रहता है एंड मेरे शो के इंटरेस्ट में रहता है।
1: अब टेरेंस यहाँ पे कुछ इतनी टेक्निकल बातें आपने बताई, इतनी कुछ कठिन गाने,
0: हाँ,
1: जो आपको डांस के माध्यम से लगता है कि ये गाने बड़े कठिन है, यानी हाँ, डांस इसका जो है हाँ, बड़े कठिन रहे हैं, वो कौन कौन से गाने आपके शोज में रहे हैं?
0: लेकिन एक गाना है संजय लीला भंसाली के, सभी जो गाने होते हैं ना वो कठिन होते हैं, बिकॉज़ एक बेंचमार्क कितना सेट किया ना
1: उनकी एक फिल्म आपने की हुई है,
0: हाँ, रामलीला। तो उनके गाने मुझे बहुत कठिन लगते हैं, जैसे जो ऐश्वर्या जी का हम दिल दे चुके सनम में ओपनिंग सॉन्ग है,
1: अच्छा
0: मनमोहिनी,
1: अच्छा मनमोहिनी,
0: उसके जो अल्फाज चल रहे ना इतने फास्ट है, उनको मैच करना डांस में लाइव स्टेज में, फिल्मों में क्या है कट कट करके कर सकते हो आप, हर एक शब्द को लेके फिल्म कर सकते हो, लेकिन स्टेज पर कैसे हर एक शब्द को वो, और वो इतने फटाफट बोल रहे हैं, और वो लड़की का मतलब एक औरत क्या होती है, एक लड़की क्या होती है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हीरोइन का डिस्क्रिप्शन है, पहला शॉट है। सो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू यू नो कोरियोग्राफ ऑन स्टेज।

0: गाना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, लाइक ब्रेथलेस ऑल्सो भी जो गाना है वो बहुत डिफिकल्ट है. और कभी कभी जो ऐसे गाने होते हैं जिनके यू नो म्यूजिक बहुत ही डिफिकल्ट होता है, वो बहुत वेरिएशंस होते हैं.
1: मसलन
0: जैसे इन्हीं लोगों ने तो मैं चाह रहा था कि इन्हीं लोगों ने मैं कथक ना करूं, मैं सोचा कि ये गाने पे मैं जैज करूंगा, विदेशी स्टाइल, तो बॉब फॉसी वाला स्टाइल. तो मेरे लिए बहुत कठिन था क्योंकि हमारा चैलेंज था कि एक पुराने गाने को लेकर आप नए अंदाज में इसको पेश करोगे, फिरंगी अंदाज में पेश करोगे इसको. तो अभी इन्हीं लोगों ने वो गाना सेट है सब लोगों के दिमाग में. किस तरीके से वो किया गया है उसको, अभी जैज बॉब फॉसी हैट टेल कोट वैसा वाला चमकीला वाला कॉस्ट्यूम पहना के वो कराना है, तो जो उसके बीट थे ठक ठक ठक ठक, हर एक बीट होता है तो वो पकड़ना पड़ता है. तबला है उसके अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ना बहुत ज़रूरी है. अगर वो नहीं पकड़े तो फिर वो आपकी कमजोरी है कि आपको समझ नहीं है एज अ कोरियोग्राफर कि वो आपने छोड़ दिया. आप सब कुछ नहीं पकड़ सकते हैं हर बीट को, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट होती हैं और अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया वो एक प्रोमिनेंट बीट को, तो ये आपकी कोरियोग्राफिक गलती है. तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आप ऐसे गाने को लेते हो जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ही कमाल का हो, एंड देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल.

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: The release of the PM Kisan Nidhi, the 23rd installment being done by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
2: Ji haan, Pradhan Mantri, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 crore वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंग्स दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि। इमेजिन द लेवल एट विच दिस scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.

इन पर विराजमान राज्यपाल आरएन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में

इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेप और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे, और आज भी वो मूल्य इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल 1 तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब
पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक
पश्चिम बंगाल को सहजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा, सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में
औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट मानी शेष काज शुरू हो गेछे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्री स्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फ्रेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब
इतिहास रचेगा।

এবার বাংলা থামবে না এখন ইতিহাস করবে সাথীয় আজ এই কার্যক্রমে देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं, हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं, हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें, और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है, हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं, तो मेरा आप सबसे आग्रह है,

0: अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा मंच।

युवा साथियों नमस्कार। और आज का हमारा जो कंटेंट है वो है युवा मंच कार्यक्रम में हेलो जीनियस। तो आप सभी हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे युवा साथी, और फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर रहेगा 01892224391। फ़ोन नंबर आप एक बार फिर से सुन लीजिए 01892224391। और जब तक हमारे जीनियस हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नई विक्टोरियस, स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तो युवा साथी, स्वागत है आपका एक बार फिर से युवा मंच कार्यक्रम में, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ नर्मदा। तो आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नंबर रहेगा 01892224391। नंबर हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं 01892224391।

0: हेलो
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं साक्षी बोल रही नूरपुर से। साक्षी
0: नाम एक बार फिर से बताना।
1: नूरपुर से।
0: साक्षी नूरपुर से। जी साक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: हाँ जी मैम जी, आप कैसे हो?
0: हम तो बहुत अच्छे हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, और साक्षी का
1: मैम जी,
0: फोन आया ना तो और भी अच्छा लग रहा है।
1: हाँ जी,
0: अच्छा,
1: आपको बहुत अच्छा लगता मेरा फोन आता तब।
0: हाँ बिल्कुल।
1: हाँ जी, मेरे को बहुत खुशी मिलती है आपसे बात करने। कुछ
0: अच्छा, तो चलिए साक्षी, बताइए आप करती क्या है?
1: नहीं, मैं हैंडीकैप हूँ घर में, रहती हूँ। मेरे को गुनगुनाना बहुत पसंद है, गाने सुनना,
0: गाने गाती हैं? अच्छा
1: सुनाऊंगी।
0: अच्छा गाने गाती हैं, तो आज हमें भी सुनाएंगी कुछ?
1: हाँ जी सुनाती
0: हाँ, क्या सुनाएंगी?
1: हूँ।
0: जी जी
1: कहाँ
0: जरूर।

0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे साक्षी, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। और कुछ और कहना चाहती हैं, क्या शौक रखती हैं आप?
1: शौक तो बस यही है गुनगुनाने का, मेरे को और किसी बात का शौक नहीं है।
0: अच्छा।
1: मैं ना, मेरे को एक शौक है अपने मामा जी के घर जाने का, मैं वो वहाँ बहुत खुश रहती हूँ।
0: अच्छा, तो
1: हाँ जी।
0: अच्छा, तो कितने
1: इतनी खुश मैं अपने घर में नहीं रहती हूँ जितनी उनके घर में रहती।
0: मामा के घर में ज्यादा खुश रहती है, ये सभी को होता है ना, मामा के घर में सबको अच्छा लगता है।
1: सभी को तो होता है पर मेरे को बहुत ज्यादा है।
0: आपको ज्यादा अच्छा लगता है, चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: तो मेरे को इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी के घर में आने का मन नहीं करता।
0: अच्छा, तो पास में ही है मामा का घर?
1: नहीं, दूर है, पंजाब में है मेरे मामा का घर।
0: अच्छा अच्छा, तो फिर आप कितने दिनों के बाद जाती हैं वहाँ पे?
1: जाती हूँ, मेरी मम्मी जाती है साथ में, तो ही जाती हूँ, ऐसे मेरा जाना नहीं होता। ओ,
0: अच्छा।
1: हाँ
0: हाँ, अच्छा, कौन कौन है तो मामा के घर में, कौन कौन है?
1: मेरे मामा जी हैं, नाना जी हैं और मेरी मामी जी हैं।
0: अच्छा, तो उनके उनके बच्चे आपके साथ खेलते होंगे, बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है?
1: बड़े बड़े हो गया उनके।
0: अच्छा ठीक।
1: शादी हो, दीदी की शादी होती है, दो भैया तो उनकी नहीं हुई, अभी भैया हैं दो।
0: अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलिए साक्षी, आपने फोन किया, बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए।
1: मैम जी, कौन कौन से गाने हैं?
0: गाने आज हम आपको सुनवा रहे हैं अपनी पसंद के।
1: अच्छा, मेरे को अच्छा सा गाना सुनाना।
0: हाँ जी,
1: मैंने अच्छा सा गाना सुनना, कोई
0: ठीक
1: है, अच्छा लगा देना।
0: ठीक है, आप सुनते रहिए, आपको जरूर गाने पसंद आएंगे। ठीक है,
1: हाँ जी, ठीक है,
0: शुक्रिया फोन करने के लिए।

0: हेलो जीनियस, हेलो। हेलो जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अगर कोई बोल रहे हैं तो। हाँ जी, थोड़ा ऊंचा बोलिए।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, ज़रा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज़ तो बहुत कम आ रही है।
1: मैम, कैसे हो?
0: मैं ठीक हूँ, आप अपना नाम बताएंगे?
1: मेरा नाम है अनीता,
0: अनीता, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मंडी से,
0: मंडी से? बहुत दूर से बोल रही हैं। क्या करती हैं अनीता?
1: हाउसवाइफ हूँ जी।
0: हाउसवाइफ हैं?
1: हाँ जी।
0: अच्छा, आवाज़ से लग रहा है जैसे कोई स्टूडेंट है।
1: नहीं,
0: अच्छा, ठीक, मंडी में घर हैं।
1: हाँ जी,
0: अच्छा, तो और बताइए अपने बारे में।
1: बस कुछ नहीं, घर का काम काज और बस।
0: घर का बहुत काम होता है ना,
1: हाँ जी,
0: फुर्सत नहीं मिलती है। फिर रेडियो सुनती हैं आप?
1: हाँ जी, सुनते रहते हैं, पर फोन
0: अच्छा,
1: नहीं लगता, पहली बार लगा है अभी।
0: पहली बार लगा? चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: हाँ जी,
0: हाँ, तभी बोलते हैं ना कि लगाते रहिए, कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी तो ज़रूर लगेगा, है ना।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अच्छा, तो मंडी के बारे में कुछ खास बताइए।
1: मंडी में भी बस ऐसे ही गाँव में।
0: अच्छा, तो खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको?
1: सब कुछ ही अच्छा लगता है, दाल चावल रोटी
0: अच्छा,
1: सब्जी।
0: स्पेशल डिश क्या है मंडी?

0: बेटी की शादी हो गई है।
1: बेटी की शादी हो गई है?
0: हाँ जी।
1: अच्छा ठीक। और बेटा क्या करता है?
0: पढ़ते हैं अभी भी।
1: बेटा पढ़ता है? और बेटी की बहुत जल्दी तो नहीं कर दी शादी?
0: नहीं,
1: पढ़ाई तो करवाई ना बेटी को? अच्छा ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे बहुत धीरे धीरे बोल रही हैं, कहीं शर्मा के तो नहीं बोल रही हैं?
0: नहीं सर, पहली बार लगा है ना।
1: अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लगा
0: जी।
1: है ना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सुनते रहा करिए आप रेडियो आकाशवाणी धर्मशाला, और जब भी कोई कार्यक्रम ऐसे आता है कि फ़ोन पे बात हो सकती है तो ज़रूर करिए, है ना। शुक्रिया फ़ोन करने के लिए।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास।
1: हेलो हेलो
4: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
5: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
6: Nexa.
1: हेलो
7: हेलो
1: जी, नमस्कार।
7: नमस्कार मैम,
1: कैसी हैं?
7: ठीक हूँ, आप बताओ?
1: बढ़िया। आपका नाम?
7: मेरा नाम मेरा नाम सिमरन।
1: सिमरन कहाँ से बोल रही हैं?
7: जवाली शमकेहर से, कांगड़ा।
1: जवाली से?
7: हाँ जी, हाँ। जवाली से, शमकेहर है हमारा गांव।
1: अच्छा अच्छा, आपसे पहले भी बात हुई है शायद, है ना?
7: हाँ जी, पिछले 1-2 हफ्ते पहले।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है आपसे बात हुई थी। अच्छा, तो जरा हमारे श्रोताओं के लिए बताएंगी आप क्या करती हैं?
7: मैं बीएड कर रही हूँ।
1: बीएड ना?
7: हाँ जी।
1: कहाँ से कर रही हैं?
7: इधर चलवाड़ा से।
1: ठीक,
7: कांता कॉलेज ऑफ
1: एजुकेशन। अच्छा ठीक। और क्या टीचर बनना चाहती हैं? यही शौक है आपका?
7: हाँ जी मैम, बीएड कर रही हूँ तो यही है अभी तो।
1: इसीलिए बीएड कर रही है ना?
7: हाँ जी।
1: ठीक ठीक, और कुछ बताना चाहती हैं?
7: और भी ठीक है, बस मैं सोचा आज, वैसे तो टाइम बड़ा कम लगता है, पर आज मैंने बताया था कार्यक्रम, तो फिर सोच रही थी बात करने की।
1: अच्छा
7: हाँ जी,
1: चलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। समय कम है हमारे पास अब, लेकिन चलिए अच्छा लगा आपने फोन किया।
7: मेरे पास भी कम ही था, मैंने अभी देखा ना।
1: हाँ हाँ
7: हाँ जी, फोन मेरे पास नहीं था, पता नहीं कुछ कर रही थी मैं काम।
1: अच्छा अच्छा,
7: मैं लिया, पता नहीं लगता है कॉल की नहीं, पर लग गया आज भी।
1: लग गया। चलिए बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया आपने फोन किया। और अब मुझे इजाजत दीजिए।
7: हाँ जी मैम,
1: शुक्रिया फोन करने के लिए।
8: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से, और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूं एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
9: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
10: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

0: श्रोताओं, किसान वाणी कार्यक्रम आज प्रसारित किया जाएगा शाम 6:05 पर और 6:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम मौजा ग्राहिदियाँ। विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस प्रसारित किया जाएगा रात्रि 8:00। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 7:10 पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले की कार्यक्रमों की। अभी 6:00 को है, अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: यार, कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। उन्होंने DBT के तहत 9,44,00,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। उन्होंने लोगों से कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के वैश्विक उत्सव में सहभागिता निभाने का आह्वान किया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम देश के सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता में एक रूपता के दर्शन करवाता है। शिमला स्थित लोकभवन में पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष मिलन कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। राज्यपाल ने कहा कि विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और विभिन्न राज्यों की विशिष्ट संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का संरक्षण व संवर्धन भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक धरोहर मूल्यों और परंपराओं से युवाओं को जोड़कर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार भविष्य में लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने पर विचार कर रही है ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके। आज शिमला में लोक निर्माण विभाग में गुणवत्ता आश्वासन विषय पर आयोजित उत्तर क्षेत्रीय अंतर्राज्य संवाद सत्र की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्ष

0: राष्ट्रों में हिमाचल ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है और इस दौरान लोक निर्माण विभाग की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग को सशक्त और तकनीक आधारित कार्यप्रणाली अपनाने पर बल दिया।
1: मेरा ये मानना है कि पीडब्ल्यूडी जो हिमाचल प्रदेश में है, जो अभी अपनी 70% कार्य और एनर्जी सड़कों पर लगाता था, भविष्य में हमारी सरकार ये प्रयास करे कि पीडब्ल्यूडी विभाग टनलिंग भी बनाए, रोपवेज भी बनाए, सड़क तो बनाते ही है, पुल तो बनाते ही, उसमें तो उनकी एक्सपर्टीज है, और डैम बनाने के दृष्टिकोण से भी पीडब्ल्यूडी के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें।
0: इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने क्षमता निर्माण और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सतत विकास की दृष्टि से कार्य करना अनिवार्य है। संवाद सत्र में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों व अभियंताओं ने हिस्सा लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि पारदर्शिता और सुशासन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पहचान है। आज नाहन में विकसित भारत सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जहां एक ओर यूपीए सरकार घोटालों के लिए जानी जाती थी, वहीं वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं से विभिन्न वर्गों के लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
2: अब हम मोदी जी की सरकार के 12 वर्ष की तुलना किसी भी पुरानी कांग्रेस जनित सरकारों से करते हैं तो हमें एक अलग चित्र दिखाई देता है। 2004 से लेकर के 2014 तक सोनिया जी के नेतृत्व वाली सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और पूरे 10 साल तक पूरे देश भर में घोटालों की चर्चा, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले। और मोदी जी का कार्यकाल एक डिजिटल अर्थव्यवस्था का कार्यकाल।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। एनटीए ने एक वक्तव्य में कहा है कि पुनः परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में संचालित की जाएगी। 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। इधर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर परीक्षा केंद्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कांगड़ा जिला में 12 परीक्षा केंद्रों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सिरमौर जिला में 3 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं जहां 638 परीक्षार्थी नीट परीक्षा देंगे। नाहन में नियुक्त परीक्षा पर्यवेक्षक मोहम्मद रिजवान ने ये जानकारी दी।
3: हाँ, तो इस बार एनटीए ने हमारा री एग्जाम के लिए हम लोग जा रहे हैं और टोटल हमारे पास नाहन में 638 कैंडिडेट्स हैं और 3 सेंटर हैं टोटल। जो भी हमारे यहाँ सीसीटीवीज हैं और जैमर्स हैं और गाइडलाइन जो एनटीए की तरफ से आए हैं वो हमने अच्छी तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
4: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम किसानवाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि कने किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे किसान बागवान भाई बहन जो सारिया श्रोतियों जो किसान मित्र दी संझ दी सब वेला टियाले ते दो हाथ जोड़ी के प्यार भरी राम राम। कने किसान साथियों आज टियाले पर मेरे सोगी हैं फ्री ते चंचलो जी राम राम जी।
2: राम राम किसान मित्र जी कने प्यारे प्यारे किसान भाइयों जो मेरी तरफ ते भी प्यार भरी नमस्ते राम राम
1: जी। चंचलो जी दिखा पी जल्लू दिखा दिन गर्मी पवा कर दी ना।
2: हाँ जी
1: कनक हाँ दे किसान चलो लगे होंगे अपने खेतों में है ना। हूँ दिखा खरीफ का जोड़ा मौसम ऐसा शुरू है कने किसान साथी अपनी जी खरीफ की जी कोई छली की बुआई की कोई चलिया निकाला करते कुछ कुछ छली की जी निराई गुड़ाई चली है ना। सोगी धाना की जी सह बिल्कुल तैयारी है पनीरी तैयार है धाना जे सह लोग लगाना लगी भी हो ना किसान
2: हाँ आते हैं कुछ है किसान आते लगी भी लाना कने कुछ है किसान आते
1: लाई भी हाँ कुछ तैयारी करा दे कने कुछ जे सह बेले होंगे आए
2: ना लाई भी बैठे कुछ
1: जी। तो दिखा किसान साथियों का जड़ा कम है ना सर कभी जड़ा सर नहीं मुकदा तीन तो एक अज ये कम कमाना कने कल जड़ा सर एक कम नवा कम देना और सोची लिया होंगे ना।
2: हाँ जी बिल्कुल
1: कने दिखा कार्यक्रम है किसान वाणी कने जिया कि अहाँ श्रोता अहाँ के सारे किसान साथी जानते हैं कि हर दिन अहाँ एक जड़ी सह योजना के उपर गल करते हैं ना।
2: हाँ जी
1: तो दिखा भाई चंचलो जी अज टियाले पर आए हुए कहना जानकारियां का बिटारा चंचलो हाल जड़ा सर नहीं हुआ ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना।
2: हाँ जी बिल्कुल
1: चंचलो जी तो अज क्या जानकारी साझा करने वाले ने।
2: बिल्कुल किसान मित्र जी अज अहां दे किसान भाइया किसान भैणा दे फायदे दी एक योजना इस दे बारे च अज अहां गल करनी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दे बारे च।
1: हां जी
2: तो किसान भाइयों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 च शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य है ग्रामीण कने गरीब परिवार दी महिला जो मुफ्त LPG गैस कनेक्शन प्रदान करना है।
1: हां जी
2: इस योजना के तहत पात्र परिवार की महिला जो बिना किसी सुरक्षा जमा से मुफ्त LPG गैस कनैक्शन दिते जाता है कने इस दे सोगी सिलेंडर पर विशेष सबसिडी जिया कि 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपये तक छूट भी दी जाती है। यह कनैक्शन परिवार की महिला मुखिया के नाम पर जारी किया जाता है जो महिला सशक्तिकरण जो बढ़ावा भी दिता है। तो अगर अहां पात्रता की गल करन ता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का फायदा लेने वास्ते आवेदक की उम्र जड़ी है 18 साल या इससे ज़्यादा होना चाहिए कने आवेदन करने वाली महिला ही होना चाहिए। बोलने का मतलब है कि ये जड़ी योजना है महिला वास्ते है
1: जी। हाँ जी
2: तो महिला हाँ जी महिला महिला भैनन से इस योजना का फायदा जड़ी से ले सकती हैं। तो आवेदक का ना जड़ा सै इस सोगी आवेदक का ना गरीबी रेखा श्रेणी या अंतोदय अन्न योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए। आवेदक के घरे पहले तो कोई भी LPG कनैक्शन नहीं होना चाहिए कने आवेदन करने वास्ते आधार कार्ड राशन कार्ड पता प्रमाण बैंक खाता पासबुक कने पासपोर्ट साइज फोटो होना भी जरूरी है। आवेदन करने वास्ते आवेदक अपनी नज़दीकी गैस एजेंसी से जाई करी आवेदन करी सकते हैं कने इस योजना का लाभ जड़ा से पाई सकते हैं
1: जी। तो ये थी जड़ी से जानकारी तो दिखा जानकारी चंचलो जी कोई भी हो है, हाँ जो जड़ा से पता होना चाहिए ना।
2: हाँ जी
1: ग्राएं विच जड़ा से कई बार नहीं भी पता होता कई बेचारे तो अहाँ का फर्ज बनता कि जी कोई नोई कोई योजना निकली है तो अगर कुछ लाभ नहीं मिले तो एक ही दूए भी जड़ा सा दसा कने तिना भी पूरी जी जो दस्तावेज इस लगते हैं तुरंत पूरी मदद कर दी कि जो नहीं जाए आई भी सकते ना।
2: हाँ
1: तो जी तो चल अगर कुछ का काम अगर होता तो जी कोई कागज़ कोई जमा करवाना कोई बनवाना है तो एक ही दूए की मदद जी सर ग्राएं बच्चे अपना भाईचारा जरा सा जरूर दिखने मिलता है ना।
2: जी किसान मित्र जी तो बिल्कुल ठीक बोलिए कि कने जी भी सरकारी योजना होंगी तिसका फायदा हाँ किसान भाई हाँ श्रोता ता ही ले सकते हैं अगर तिना के कागज वगैरह जड़े से पूरे हैं नहीं तो इं तिना फिर काम लटकी आता तो इस गला का ध्यान जड़े से जरूर रखना चाहिए कि सरकार अगर कोई योजना का फायदा हाँ दे दी तो हाँ जो भी जो दस्तावेज होंगे से पूरे होना चाहिए।
1: बिल्कुल हाँ जी जी तो चंचलो जी हुण जड़ा सा मेरे हिसाबे कन्ने एक जड़ा सा लोग ही सुने जाए है ना।
2: हां जी
1: उसते बाद जड़ा सा अगली जड़ी सा गलबात एक उन्नत महिला किसान कन्ने कीती गई गलबात सुनदे हां उसते बाद है ना।
2: जी जी

0: किसान भाइयों इस प्यारे दे लोकगीत दे कन्ने किसान वाणी कार्यक्रम हुणे इत्थों मुकदा जाने तों पहले दस दिए कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रिहा अंकित दीवान
1: कने कार्यक्रम दे प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह
0: हुण हां दुनिया दिया अनुमति
1: अच्छा जी जय हिंद।

0: फिरी ते सारे सुनने वाले किसान बागवान भाई भैन सारे श्रोतियों का एक बार फिरी ते अहां टियाले पर स्वागत करते हैं। कने जड़े जड़े श्रोता अहां सोगी हुणी जुड़े दे दस दिए कि कार्यक्रम मैं मौजियां ग्राई दियां कने मैं किसान मित्र कने मेरे सोगी है चंचलो जी।
1: जी किसान मित्र जी तो हाँ जो एक बारी फिरी ते नमस्ते राम राम कने प्यारे प्यारे किसान भाइयों का एक बारी फिरी ते हाँ टियाले पर स्वागत करते हैं। कने किसान भाइयो तो हाँ जो ता पता है कि दिखा हूँ आज जड़ा बार है सा शनिवार है।
0: हाँ कने फरमाइशी लोग गीत पर आधारित कार्यक्रम ले करी अज अहाँ आंदे हैं तो अहाँ की गुजारिश रहनी है दो हाथ जोड़ी की कि जड़े गीत अहाँ ले करी आयो है ना उन्होंने बिच ही तो हाँ जी सह कोई अपनी पसंद जी सह दसनी है कने सिग्नल च रही के अहाँ कने गल करनी है फटाफट जरा सह अपना नाँ पता जरा सह दसना है ना।
1: हाँ जी
0: तो चंचलो जी तो हाँ दसा भला अहाँ वाल कौन कौन अज जे सह गीत है ना।
1: हाँ जी किसान मित्र जी पर पहले किसान भाइयों अपना फोन नंबर दस दें दे ताकि से हाँ जो फोन जरा सह कर
0: जी।
1: किसान भाइयों फोन नंबर तो हाँ पहले लिखी लिया 0-1892-2-43-91। कने किसान भाइयों जेड़े लोग गायक अजा सांभाल हैं सह करनैल राणा धीरज शर्मा मान सिंह माता दिया पेंटा भी हैं हाँ वाल नसीम वाला राजेश कुमार राकेश चंद संदीप शेर सिंह जरियाल वर्षा कटोच कने विक्रांत
0: जी इसी बीच एक श्रोता अहां सोगी जुड़ी है ना करदे ने इना करने गल।
1: जी
0: हेलो हेलो
2: हाँ जी सर नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी स्वागत है कार्यक्रम च जी अपना नाम दसा।
2: मैं राजू बोला जी।
0: जी कर बोलो। हाँ जी
2: दौड़ चौक ते बोला सर।
0: जी जी क्या काम काज लगायो
2: आजकल तो सर उरे तैयारी लगी है वासी किना नू देना लाई है ना सर।
0: हाँ बिल्कुल दिखा हाँ दे किसान जड़े से खरीफ दी मुख्य फसल है हाँ दी धान है ना।
2: हाँ जी सर
0: धान हो गई कने छल्ली हो गई कने किसान हाँ दे इस वेले जड़े से पूरे खेतरा भी चनकम में लग गयो।
2: जी सर जी सर
0: जी ता तो हाँ आज फोन किता ता तो हाँ जो दस्ती है कवरी फिरी ते जड़े से कौन गीत ना हवाल।
1: हाँ जी अहबाल करनैल राणा धीरज शर्मा मान सिंह माता दियाँ पेंटा भी हैं नसीम वाला राजेश कुमार राकेश चंद संदीप शेर सिंह जरियाल वर्षा कटोच कने विक्रांत
2: वर्षा कटोच जी कोई भी गाना जी।
0: जी जी शुक्रिया जी।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, त्यारे पर तुहाडा स्वागत है। कौन बोला दे?
1: मैं बोल रहा हूँ जी, मंडी डिस्ट्रिक्ट सरात से रविंदर सिंह।
2: जी रविंद्र सिंह जी, तुहां दे ओथू कार्यक्रम कदे सुनाई देंदे? सिग्नल ठीक होंदा?
1: बढ़िया जी, बढ़िया सिग्नल आता है आपका।
2: अच्छा जी, क्या काम?
1: करनैल राणा की आवाज में एक गीत सुनाओ।
2: अच्छा
0: ठीक है जी, तुहां जो करनैल राणा दी आवाज, हां जरूर माता दी भेंट सुनानी है। तो अपने बारे च दसा कुछ, खेतीबाड़ी कर दे?
1: हां जी करते हैं, मक्की लगाई थी।
0: मक्की लगाई?
2: अच्छा, निराई गुड़ाई हुई है मक्की दी कि नहीं?
1: हां जी हां जी कर रहे हैं।
2: अच्छा जी, तुहां फोन किया, तुहां दा शुक्रिया। तुहां दी पसंद तुहां दे रेडी सेट पर मंडी भेजा करदे, लेकिन उससे पहला सुन लेंदे ने कुछ एक संदेश है ना।
1: धन्यवाद
2: जी।
3: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
4: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
5: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं? डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
6: ताऊ जी, अब चिंता छोड़ो। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
7: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी,
1: हेलो
0: नमस्कार जी, स्वागत है जी।
1: नमस्कार किसान मित्र जी, कने तुम्हारे कने कने चंचलो जी और मेरे तरफ से नमस्कार
2: नमस्ते जी, नमस्ते। प्याले पर तुसा दा स्वागत है।
0: जी, जानी पहचानी आवाज कने नियमित अहां दे जेड़े से श्रोता ने बड़ी देर दे लगा दे है फोन।
1: ना ना उन्हें के लगाया
0: अच्छा, दिखा भी दिया तो प्रयास किता का दिखा तो दी कोल जड़ी सर टियाले पर लगी यही है ना
1: हाँ जी। और सुनाओ क्या चाल ने कटियाले से।
0: जी। बड़े बढ़िया, बड़े बांके कने तोहा सुना तोहा दे उत्थू किते है, मौसम है गर्मी किते की पवा कर दी।
1: गर्मी तो यहाँ के गर्मी तो क्या पूछा तो हाँ
0: हाँ जी
1: गर्मी अपने रंग दिखा कर दी है, कने
0: जी जी जी जी
1: मौसम कने चलना ही पड़ा।
0: हाँ बिल्कुल
2: जी ता
1: तो
2: तुम्हारे
1: जिया ही बीजा कर दे। हाँ जिया बीजा कर दे तिया ही वटना। हाँ
0: हाँ
2: हाँ जी
0: जी
2: हाँ
0: बिल्कुल
2: जी
0: जी
1: हाँ जी। एक अहाँ सोच दे के मौसम प्रकृतिक है, लेकिन प्रकृतिक नहीं है, ये सारे के बीचे कंडे या ऐसी वो ना तो चला कर दे।
0: हाँ
2: हाँ जी हाँ
0: बिल्कुल
1: जी बिल्कुल।
2: ता तू हाँ टाले पर फोन कितने आ कौन दे लोग गायक जो सुनना चाहेंगे आज।
1: आज तो हाँ भी मर्जी था सुनना, जो दिया मर्जी सुनाई दिया।
2: ठीक है जी, तुसा टाले पर फोन किता, तुसा दा बड़ा बड़ा धन्यवाद, कन्ने सुना असा दी पसंद आए लोकगीत।
1: धन्यवाद जी।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार जी, स्वागत है जी कार्यक्रम च। अपना नाम दसा जी।
1: मैं डिंपल कुमार बोल रहा सरास से। अरे
0: जी डिंपल जी, तां सौदा बेची अड़िया डिंपू दा?
1: चले लोग तो बस है।
0: हाँ, दिक्खा भी अहां दे जेड़े किसान साथी आंदे ना अपने, दिक्खा काम भी कमाने ने करना भी,
1: हाँ
0: जिंगे थोड़े देर टाइम लग गया था देना डिपू में, वहां भी जाना ना।
1: हाँ जी हाँ जी
0: अच्छा जी, तो हाँ,
1: बताए
0: जो
1: कुछ
0: कौन दिया गीत सुन के तो हाँ चंचलो जी
1: बढ़िया दिया
0: दसने।
1: गाई दिया कोई।
2: डिंपल जी असा वाल जेडे लोक गायक हैं सैन धीरे शर्मा मान सिंह माता दियां पेंटा भी हैं नसीम बाला राजेश कुमार
1: नसीम
2: राकेश
1: बाला
2: चंद।
1: सुना दे मैडम जी। थैंक
2: ठीक है डिंपल जी, तो हाँ जो नसीम बाला दी आवाज़
1: यू
2: सुनांदे ने
1: मैम, थैंक
2: प्यारा
1: यू।
2: दिया लोक गीत।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just Rs. 3.

0: छलियां बांधते ने, बांदर खा गया दे, डंगरे खा गया दे। हाँ जी हाँ जी
1: अच्छा दिखा भाई, ए तो दिखा जियां जियां दिखा बना बिच, जियां बना दा कटान होवा दा बना बिच, जियां जेड़े से फलदार पौधे बड़े घटा करदे कने जेड़े जंगली जानवर ने अहां दे घर आले बाहां दौड़ा करदे हैं
0: हाँ जी हाँ जी सर।
1: जी। तां इसके अलावा जियां उत्थू तुहां दी तां जुआली उत्थू शाह नहर दा पानी भी लगदा, तां इयां धान वगैरह नहीं लगांदे?
0: साढ़े सर सारे पानी लगता, नाले लगे गवर्नमेंट की तरफों।
1: अच्छा,
0: साड़ी बंजर जमीन है ना,
1: हाँ जी,
0: ता मतलब सारे पूरे नालियां कटिया गवर्नमेंट की तरफों,
1: अच्छा,
0: पर कमाने वाला कोई नहीं।
1: हाँ दिखा भाई कम तो हाँ जो जरनैल सिंह जी अपने खेतों से जड़ा से कमाना ही पौना है ना।
0: हाँ जी हाँ जी
1: हाँ तो हाँ अज फोन किया करना तो हाँ दसा कर दें चंचलो जी अहाँ वाल कौन कौन गीत इस वेले जड़े से आने ना।
2: जी। हाँ बाल हैं धीरज शर्मा, मान सिंह, माता दिया पेंटा भी हैं, राजेश कुमार, राकेश चंद, संदीप कन्या, विक्रांत।
0: तो हाँ माता जी पेट सुना जी, ये
2: ठीक है
0: नमस्कार चंचलो बोबो।
2: ठीक है जरनैल सिंह जी, तो हाँ जो भी नमस्ते,
1: जी
2: राम राम
1: जी
2: जी।
1: शुक्रिया जी फोन करने तैयार,
0: सारे मतलब जो भी परिवार है
1: जी शुक्रिया जी।
0: उसको सबको।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: नई विक्टोरियस स्टाइल कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
1: हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी, लगा करता कि इन्हें करना है अहाँ का संपर्क जड़ा सा नहीं हो पाया। अहाँ की गुजारिश रहती है कि जल भी अहाँ जो फोन करन था सिग्नल च रही कि जड़ी से अहाँ करने गल करनी है ना जी। कने इसी कने ही दिखा भी गल्लां बातां करदे किसान साथियों ने जड़ा सह समय दा भी पता जड़ा सह नहीं चलदा कल समय जड़ा सह संपन्न होने जो आई जांदा ना।
2: हां जी, तां किसान मित्र जी चलदे चलदे अपने किसान भाई अपनी पसंद दा लोक गीत सुनाई देना
1: जी।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार पल्ली।
0: जी अपना नाम दसा कने घर को तुम तोहां दे।
1: मेरा नाम राधा देवी कना दे घर जतरांगल।
0: जी तो राधा जी तोहां गल बात कर ली। हाँ जो बड़ा अच्छा लगा। कने माफी चाहेंगे कि हुण जिहड़ा सा समय जिहड़ा सा संपन्न होने जो है हाँ तोहां दी पसंद तोहां जो जिहड़ा सा नहीं सुनाई पानी है ना।
1: जल्दी अगले हफ्ते सुनाई क्यों।
0: जी, शुक्रिया जी है ना। इसी कन्ने ही जिहड़ा सा कार्यक्रम का जोड़ा समय ऐसा इतों ही संपन्न होया। तकनीकी सहयोग दिता अंकित धीमान ने। प्रस्तुतकर्ता कार्यक्रम के जितेंद्र पाल सिंह उन्होंने दोनों दिया अनुमति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा ग्राइंडिया। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 7 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में यह बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार के पूर्वोत्तर दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
2: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना के 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों ने योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू होगा। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथूला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। जत्थे में 2 संपर्क अधिकारियों और 1 चिकित्सा अधिकारी सहित 41 तीर्थयात्री और 4 सहायक कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस दल की कुल संख्या 47 हो गई है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 123 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in presence of Mr. Modi, the President said, India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship. Addressing the public gathering, Prime Minister Narendra Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India.
2: Odisha mein aarthik gatividdhiyan, nivesh aur udyogon ko aakarshit karne ka samarthya aaj nazar aa raha hai. Kendra sarkar ka vision hai पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
3: The Prime Minister today inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. Later, the PM arrived in West Bengal for a two-day visit. He took part in Pashchim Banga Divas celebrations at Tarkeshwar in Hooghly district. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme worth 18,880 crore rupees, benefiting over 9.44 crore farmers across the country. Mr. Modi participated in a grand function to celebrate the State Day along with Chief Minister Suvendu Adhikari. He launched, dedicated and laid foundation stones for various development projects across railways, agriculture, rural development, fisheries and animal husbandry sectors. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the BJP government has started working at super fast pace for Bengal's development. He expressed hope that this historic Pashchim Banga Divas inspire development of West Bengal. Prime Minister Narendra Modi

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 7:10 हुए हैं। अब अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने 4 जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग है उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये 4 वर्ग है इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
2: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है, सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं?
2: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी।

0: और फिर राष्ट्र को, तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती है। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का, जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा, तो उसमें देखिए दो तीन चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो दो चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई। खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
1: जी,
0: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए, जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं
1: जी,
0: तो इस तरह की जो योजना है। और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही है, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों पर, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेके पीजी तक बच्चियां जो हैं वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं, क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है, तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगी।
1: बहुत इंपॉर्टेंट ये सशक्तिकरण का,
0: ये बहुत, हाँ, सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है, 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
0: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो की अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करती। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि एनडीए खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई हैं ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिजेंट में लेडी नहीं लीड करती,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो जाता।
0: अब आप देखिए अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती हैं, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं एलपीजी, तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर किया, और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है, फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी

0: आती है भारत की कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है। सो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलों को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
1: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
0: जी।
1: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
0: जी।
1: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपने खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर के ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, आईटी से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर MBBS के देख लें तो 55,000-56,000 की होती थी। 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 MBBS आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई हैं। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, MBBS कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी हैं, तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास थी आजादी के बाद, 2014 तक खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सीटें जो है MBBS की 50,000 और बढ़ने वाली हैं। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए है। ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे। ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए जो सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा, जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
0: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों के,
1: खेलो इंडिया, वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उनपे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लाइक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं भी, सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो ITI हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है ITI करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर ITI है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग हैं, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था, अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं, तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
0: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
1: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे

0: से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको बीए करना है, फिर 2 साल पीजी करना है, फिर एमफिल करना है, ये करना है, उसके बाद कम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो क्या होता है मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री में पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स में अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले?
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि आप जो करना चाहे करो, युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: नहीं। तो सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में, और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं, 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है, 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है। वो तो वो एक अवसर, और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप
0: इंडिया द्वारा कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है, और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट है, IIT है, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर है, वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री, जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है, लाखों यूथ जो है वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं, और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसे अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
0: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट, कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है,
1: बहुत बड़ा समर्थन है।
0: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती, या और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
1: 6,000 प्रति वर्ष, 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 के हैं,
0: तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना हो तो बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक अगर आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रेवोल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है वो आप देखिए, हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है क्योंकि उसमें 10% 12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है। और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है
1: जैसे अभी सर्जना जी बता रही हैं,
0: तो वो भी तो वही बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है। और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनकी गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट नहीं बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है। जो मतलब जो सीधे से कहां से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान ले कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका, पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं। जो 55-60 करोड़ लोग हैं, वो कहां से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है, और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं। कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करे, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त कर, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जो इन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्म सम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, अभी वनवास जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखें कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि इतने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको, बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल, वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं। तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों

0: को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम नीलू जी या आप जंगल में जाके नहीं पहचान सकते। उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी। तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं, प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए, उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब,
1: हाँ, उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे,
0: श्री अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न। और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ी है उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए। तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
1: जी।
0: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो जाके खरीद ले,
1: हो जाता है।
0: नहीं, खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे चार कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है। तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं, तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया, जो नए 4 लेबर कोड आए हैं, कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कब वेज पे बिल्कुल काम नहीं करवाओगे
1: जी।
0: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रहे हो, तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है, कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी 1 रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को। तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
1: बहुत बड़ा,
0: हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं महिलाओं के लिए, अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको, अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें, तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के, समझ के, जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया,
1: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की, वो भी अलाइव,
0: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था, उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो MSME आप देखिए ना, MSME सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ,
1: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही हैं, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मॉर्टेलिटी रेट जो है,
0: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
1: जी,
0: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
1: जी, जी.
0: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है एक बीपीएल जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेश मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा। और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
2: 25 करोड़
0: हाँ, गरीबी रेखा से ऊपर उठे। और डिजिटल पेमेंट देखिए, आप सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत,
1: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात हाँ, कर रही हैं वो पूरे देश में है।
0: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहा है वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
1: जी
0: टिक्की वाला।
1: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी फार्मर्स हैं। और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
2: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहां मैं अभी गया था पिछले दिनों, जगदलपुर गया था। जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग, नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था। वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, जैसे इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल के, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं। अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
1: एक अवेयरनेस क्रिएट
2: हुई। अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर ये है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, इनको हमारे डेवलपमेंट जरूरत नहीं, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहें, जहां हैं जैसे जी रहे हैं रहें, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनके जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
1: विकास और उनके बच्चे पढ़े भी, अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंची।
2: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
1: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
2: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल को कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले देखोगे छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं। तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों पे छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो, कि अंत्योदय जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
1: सर्जना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
0: देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा 2-3 चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
1: जी,
0: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले, ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी हूँ, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए, हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए, पर्यावरण की दृष्टि में रामासर जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है। 99 तो हो ही चुकी, हो गई शायद 100 हो गई।
1: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है।
0: रामासर लेक जो है, पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना, विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी। नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
0: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 7:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त की जारी। 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 18,000

0: 880 करोड़ से अधिक की धनराशि की हस्तांतरित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने पर विचार कर रही है राज्य सरकार। नीट यूजी पुनः परीक्षा कल, देश भर के 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी लेंगे भाग, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी वायदे पूरा ना कर लोगों से विश्वासघात करने का लगाया आरोप। और दुनिया भर में कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमीरपुर के अणु में होगा आयोजित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। उन्होंने डीबीटी के तहत 9,44,00,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। उन्होंने लोगों से कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के वैश्विक उत्सव में सहभागिता निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार भविष्य में लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने पर विचार कर रही है ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके। आज शिमला में लोक निर्माण विभाग में गुणवत्ता आश्वासन विषय पर आयोजित उत्तर क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय संवाद सत्र की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में हिमाचल ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है और इस दौरान लोक निर्माण विभाग की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है।
1: मेरा यह मानना है कि पीडब्ल्यूडी जो हिमाचल प्रदेश में है, जो अभी अपनी 70% कार्य और एनर्जी सड़कों पर लगाता था, भविष्य में हमारी सरकार ये प्रयास करे कि पीडब्ल्यूडी विभाग टनलिंग भी बनाए, रोपवेज भी बनाए, सड़क तो बनाते ही है, पुल तो बनाते ही है, उसमें तो उनकी एक्सपर्टीज है, और डैम बनाने के दृष्टिकोण से भी पीडब्ल्यूडी के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें।
0: इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने क्षमता निर्माण और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सतत विकास की दृष्टि से कार्य करना अनिवार्य है। संवाद सत्र में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों व अभियंताओं ने हिस्सा लिया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम देश के सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता में एक रूपता के दर्शन करवाता है। शिमला स्थित लोकभवन में पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष मिलन कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। राज्यपाल ने कहा कि विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और विभिन्न राज्यों की विशिष्ट संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का संरक्षण व संवर्धन भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक धरोहर, मूल्यों और परंपराओं से युवाओं को जोड़कर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया जा सकता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। एनटीए ने एक वक्तव्य में कहा है कि पुनः परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में संचालित की जाएगी। इसमें 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर परीक्षा केंद्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि नीट परीक्षा का बार बार लीक होना देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इसकी गहन व निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट देने वाले छात्रों के लिए एचआरटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की गई है।
1: नीट का पेपर लीक हुआ है, लाखों बच्चे हमारे नीट के एग्जाम में बैठते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि मैं पेपर देने के बाद एक एग्जामिनेशन पास करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है और ये भारतीय जनता पार्टी के समय ही लीक हो रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकारें थे कभी भी इस प्रकार के कोई पेपर लीक नहीं हुए। ये कहीं ना कोई बड़ी गलती है। हमने नीट के हिमाचल के बच्चे हैं, हमने ये कहा कि बार बार किराया क्यों खर्च करें, हिमाचल के बच्चों को आने जाने का पूरा फ्री में उनको सुविधा उपलब्ध करवाएं।
0: इस परीक्षा के लिए कांगड़ा जिला में स्थापित 12 परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मचारियों के साथ इस बार आईटीबीपी की सेवाएं भी ली जाएंगी। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे और जैमर भी लगाए जाएंगे।
2: कल नीट का जो री एग्जाम होने वाला है जिला कांगड़ा में 12 सेंटर्स में होने वाला है, तो उनसे रिलेटेड जो हमारी तैयारी है उसकी पूरी एंड टू एंड प्रोसेस को हमने चेक कर ली और जहां जहां सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वो भी हमने डिप्लॉय कर, एग्जाम सेंटर्स पे जैमर्स की हमने वहां पर इंस्टॉलेशन करवा दी है ताकि एग्जाम कंडक्ट कराने में किसी तरीके की कोताही किसी व्यक्ति से ना आए।

0: पैसे बढ़ाकर हर उपभोक्ता पर औसतन लगभग 125 रुपए का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। जयराम ठाकुर ने सरकार पर प्रदेश में बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने में नाकाम रहने का आरोप भी लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। यह विषय उम्र बढ़ने के साथ स्वस्थ, सक्रिय और सम्मानित जीवन जीने के लिए योग का आजीवन अभ्यास करने के महत्व पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे और इसमें हजारों लोग योगासन करेंगे। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमीरपुर के अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि पारदर्शिता और सुशासन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पहचान है। आज नाहन में विकसित भारत सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जहां एक ओर यूपीए सरकार घोटालों के लिए जानी जाती थी, वहीं वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं से विभिन्न वर्गों के लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
1: अब हम मोदी जी की सरकार के 12 वर्ष की तुलना किसी भी पुरानी कांग्रेस जनित सरकारों से करते हैं तो हमें एक अलग चित्र दिखाई देता है। 2004 से लेकर के 2014 तक सोनिया जी के नेतृत्व वाली सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और पूरे 10 साल तक पूरे देश भर में घोटालों की चर्चा, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले। और मोदी जी का कार्यकाल एक डिजिटल अर्थव्यवस्था का कार्यकाल।
0: सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल को कर्ज और निजीकरण की राह पर धकेला है। एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन से राज्य पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। सुरेश कश्यप ने कहा कि सरकार द्वारा आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और विकास कार्य ठप हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने नियमित खर्चों के लिए भी कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार संस्थानों को मजबूत करने के बजाय निजी हाथों में देने की योजना बना रही है। प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरडीजी बंद करवाकर राज्य के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री विनोद जिंटा ने कहा कि केंद्र ने केंद्रीय योजनाओं को दिए जाने वाले फंड में भी कटौती की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारी हितैषी है और ओपीएस देकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त की जारी। 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि की हस्तांतरित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने पर विचार कर रही है राज्य सरकार। नीट यूजी पुनः परीक्षा कल। देश भर के 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी लेंगे भाग। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी वायदे पूरा ना कर लोगों से विश्वासघात करने का लगाया आरोप। और दुनिया भर में कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमीरपुर के अणु में होगा आयोजित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
3: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
2: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
3: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं रोजगार समाचार। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार बाल विकास परियोजना मंडी सदर जिला मंडी की कुछ पंचायत, नगर निगम, परिषद वार्डों के आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों को भरने हेतु इच्छुक स्थान

0: महिलाओं से सादे कागज पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों का ब्यौरा इस प्रकार है। आंगनवाड़ी केंद्र छनवाड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का, धारथा पड़वाहन में आंगनवाड़ी सहायिका का, आंगनवाड़ी केंद्र मानथला में आंगनवाड़ी सहायिका का, मसवाड़ में आंगनवाड़ी सहायिका का, अपर सुहड़ा में आंगनवाड़ी सहायिका, सियोग में आंगनवाड़ी सहायिका, खनाहर में आंगनवाड़ी सहायिका और शिवा एक में आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पद भरने हैं। इन पदों के लिए पात्रता इस प्रकार है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पद हेतु केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र है। प्रार्थी की आयु अधिसूचना जारी होने की तारीख को 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। प्रार्थी का नाम संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के सर्वे परिवार की सूची में दर्ज होना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन सादे कागज पर अपने पूर्ण विवरण सहित निम्नलिखित दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियों सहित दिनांक 4/7/2026 तक कार्यालय बाल विकास परियोजना मंडी सदर जिला मंडी में जमा करवाएं। रोजगार समाचार समाप्त हुए। हम आकाशवाणी के केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर विशेष श्रृंखला। इसके तहत पेश है केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर डॉक्टर राजीव भारद्वाज लोकसभा सांसद से विशेष भेंटवार्ता। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी शिमला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ साथ हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के पर भी सुना जा सकता है और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं संजीव
2: और मैं जितेंद्र
1: आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। सरकार द्वारा बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ देश और प्रदेश के हर आयु वर्ग के व्यक्ति ले रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद है कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद श्री राजीव भारद्वाज। महोदय, आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, केंद्र सरकार के 12 वर्षों को यदि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में इसके सबसे स्पष्ट उदाहरण आप किन योजनाओं को मानते हैं?
3: सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आकाशवाणी में मुझे अपने विचार रखने का सौभाग्य आपने प्रदान किया। मोदी जी का 12 वर्ष का शासनकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के अमृत काल के रूप में जाना जाएगा आने वाले समय में। 2014 से लेके अभी तक 2026 तक तो एक हिमाचल के प्रति उनका एक विशेष लगाव सर्वविदित है और उन्होंने जो जो योजनाएं लेकर आए उसका हिमाचल प्रदेश के ऊपर व्यापक असर हुआ। मैंने कहा कि हिमाचल एक छोटा सा प्रदेश है और यहाँ की जो आय बहुत अधिक नहीं है, लेकिन उन्होंने एक लक्ष्य लिया था कि गरीब के सर पे छत होनी चाहिए
1: जी,
3: और वो छत भी पक्की छत होनी चाहिए। उसके दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश को कितना लाभ मिला है आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। पहले पंचायतों में जब पूर्ववर्ती सरकारें थी तो गरीबों के लिए एक पंचायत में 2-3, बहुत अधिक कोशिश कर लेंगे तो 4 घर आते थे। आज आप आंकड़ा उठाकर देखिए, पूरे हिमाचल प्रदेश का पंचायतों का एक एक पंचायत में 150-200 घर
1: जी, बिल्कुल।
3: और ये स्थिति ये हो गई है कि आने वाले 2-3-4 सालों में हिमाचल प्रदेश में जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनके पास पक्की छत है। केवल छत नहीं है, बढ़िया घर है, साथ में इज्जत घर भी है। और उसके बाद दूसरी योजना जो मैं कहना चाहता हूँ, इज्जत घर, जिसका मैंने नाम लिया टॉयलेट्स। हिमाचल प्रदेश की स्थिति यह थी कि हमारी जो माताएं बहने हैं या तो सूरज उगने से पहले शौच खुले में जाती थी, खुले में शौच था, या फिर दिन छुप जाने के बाद जाती थी। ये स्थिति थी हिमाचल प्रदेश की
1: जी।
3: और आज आप देखिए, हर गरीब के घर के साथ इज्जत घर है, बढ़िया मकान दिया है। ये मैं समझता हूं कि मोदी जी का सबसे बड़ा बरदान है इस प्रदेश की भी नहीं, देश की मातृशक्ति के लिए। इज्जत से जीना सिखाया अगर किसी ने है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने सिखाया
1: जी।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई योजनाओं ने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा। हिमाचल में इसका प्रभाव आपको किन क्षेत्रों में सबसे अधिक दिखाई देता है?
1: मैंने कहा कि ये जो 12 वर्ष का सुशासन का जो काल है, मैं तो इसको इस देश का अमृत काल मानता हूँ, स्वर्णिम काल मानता हूँ। और मोदी जी की कोई योजना उठाकर देख लीजिए, उस योजना की विकास की धारा गांव और गरीब की झोंपड़ी तक जाती है।

0: होते हैं, और एवरेज घर की जो गृहिणी है दिन के 12 घंटे में 8 घंटे उस धुएं के सामने बैठती है। सुबह बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है, उसके बाद पति को तैयार करके काम पे भेजना है,
1: जी
0: उसके बाद दोपहर को आके शाम की चाय बनानी है, उसके बाद रात की रोटी बनानी है। तो एवरेज 8 घंटे गृहिणी लकड़ी के धुएं के सामने बैठती थी, और उससे आंख की बीमारी और फेफड़ों की
1: फिफ्टी
0: बीमारी। और मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको, ये जो सर्वे हुआ था देश की और हिमाचल प्रदेश की, 70% जो महिलाएं हैं वो आंख की बीमारी से और फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित थी। मोदी जी ने विचार किया, उज्ज्वला योजना लेकर आए, हर घर में गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर। उसके बाद जो सर्वे हुआ है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 50% इन दो बीमारियों में कमी आई है। उसका यदि सीधा सीधा श्रेय किसी को जाता है, नरेंद्र भाई मोदी को।
2: महोदय, हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक खाना पकाने के लिए लकड़ी, घास फूस और अन्य पारंपरिक ईंधनों का उपयोग किया जाता रहा है। इससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था और वनों पर भी दबाव बढ़ता था। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हिमाचल प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। उज्ज्वला योजना ने हिमाचल प्रदेश में धुआं मुक्त रसोई, महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण, समय की बचत और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश भर की करोड़ों गृहिणियां उज्ज्वला योजना का लाभ उठा रही हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश से भी बहुत सी महिलाएं उज्ज्वला योजना द्वारा लाभान्वित हैं। आइए सुने उज्ज्वला योजना द्वारा लाभान्वित महिलाओं के विचार।
3: मेरा नाम सीमा देवी है, मैं जिला किन्नौर कल्पा गांव की रहने वाली हूं। मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला। खाना बनाने के लिए लकड़ी और पारंपरिक चूल्हे का सहारा लेना पड़ता था, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब गैस कनेक्शन मिलने से रसोई का काम आसान हो गया है और धुएं से भी राहत मिली है, जिसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
4: मैं नीलम कुमारी गांव दंगड़ी जिला हमीरपुर की रहने वाली हूँ। जब से मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन मिला है, मुझे काफी फायदा हुआ। जैसे पहले जंगल से लकड़ियां लाके खाना बनाना पड़ता था, उससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था और अपने परिवार को भी टाइम दे पाते थे। और जब से उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन मिला, तब से अपने परिवार को भी टाइम दे पाते हैं। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
5: नाम अंशु वाला है, मैं कुल्लू शहर के सरवरी में रहती हूँ। उज्ज्वला योजना के तहत मुझे
6: मोदी जी ने गैस दी थी, जिसका उपयोग मैं अभी भी कर रही हूँ। कोरोना टाइम में हमें ये गैस मिली, जिसका उपयोग हम अभी तक कर रहे हैं। हम इसके लिए मोदी जी और केंद्रीय सरकार के लिए धन्यवाद करते हैं।
7: सर, जल जीवन मिशन और पीएम किसान जैसी योजनाओं ने हिमाचल के ग्रामीण परिवारों को जीवन किस तरह बदला है?
0: जीवन नहीं बदला, कायाकल्प कर दिया है।
7: जी,
0: किसान सम्मान निधि, हर किसान को जो एलिजिबल किसान है, जिसको इसकी जरूरत है, 6,000 रुपया सालाना दिया जाता है। और मैंने कहा कि किसान सम्मान निधि, ये किसान का सम्मान किया है। देश के प्रधानमंत्री ने भारतवर्ष के किसानों को ये संदेश दिया है कि किसी भी विपदा की घड़ी में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें, हम लोग तो वर्षा पर निर्भर है, सिंचाई कितने साधन नहीं है, पहाड़ी प्रदेश है, हम वर्षा के ऊपर निर्भर है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के किसान को कहा कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आपके साथ खड़ा है।
7: जी सर,
0: यदि कोई विपत्ति आती है तो आप उस निधि से बीज ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये एक सम्मान है किसान का, ये देश के प्रधानमंत्री जी ने किया।
2: महोदय, हिमाचल प्रदेश एक कृषि एवं बागवानी प्रधान राज्य है जहां अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उनकी आय को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। हिमाचल प्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक होने के कारण यह योजना उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हुई है। इससे किसानों को कृषि निवेश, बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिलती है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के कृषि विकास, किसान कल्याण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का महत्वपूर्ण योगदान है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हिमाचल प्रदेश भी एक

0: कृषि प्रधान राज्य है और हिमाचल प्रदेश के किसान भी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं।
1: आइए सुने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना द्वारा लाभान्वित किसान भाइयों के विचार।
2: मेरा नाम पवन कुमार है, मैं चंबा जिला के रहने वाला हूँ। मोदी जी ने 2000 रुपए हमारे खाते में डाला हुआ है, वो उससे हमने बीज लिए हैं, खेतों में बोया है, खेतों में काम कर रहे हैं और बहुत धन्यवाद मोदी जी का।
3: मेरा नाम रंगीला है, चंबा रहने वाला हूँ। जरा खेती बाड़ी का 2000 रुपए मोदी ने पाया तो मेरे खाते में पड़ी है, मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
4: मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के तहत अर्की उपमंडल के एक कृषक परिवार से संबंध रखता हूं और कृषि ही हमारे परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है। पिछले 5.5 सालों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये की राशि नियमित रूप से मेरे खाते में पहुँच रही है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये राशि हमारे कृषि कार्यों जैसे खेतीबाड़ी के जो उपकरण हैं, इसके अलावा खाद है, बीज है, उसको लेने में मददगार साबित हो रही है।
5: मेरा नाम हरीश कुमार, मैं मांगू गांव का रहने वाला हूं। पिछले लगभग 6 वर्षों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नियमित रूप से मिल रहा है। यह राशि समय समय पर सीधे मेरे खाते में आती है, जिससे खेतीबाड़ी के कार्यों में काफ़ी सहायता मिलती है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ।
6: मेरा नाम श्यामलाल है, गांव बातल से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी साबित हुई है। मुझे पिछले 6 वर्षों से इस योजना का लाभ मिल रहा है और इससे खेती के लिए बीज, खाद व अन्य जरूरी सामान खरीदने में मदद मिलती है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ।
7: अगर हम बात करते हैं सड़कों की, राष्ट्रीय राजमार्गों, सुरंगों और कनेक्टिविटी में काफी निवेश हुआ है, इससे हिमाचल की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी नई दिशा मिली है क्या?
8: डेफिनेटली, निसंदेह। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप छोटा सा हिमाचल प्रदेश है। मैंने कहा ना कि नरेंद्र भाई मोदी ने हिमाचल प्रदेश का एक एक कोना अपने पांव से नापा है। हिमाचल प्रदेश की दुश्वारियां क्या है, हिमाचल प्रदेश को क्या जरूरत है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और उनमें से उनको लगा कि सड़कों का काम होना चाहिए, क्योंकि जब जब हमारी सरकारें आई है, चाहे जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार हिमाचल प्रदेश में आई थी, श्रद्धेय शांता कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने सड़कों का काम शुरू किया था। उस समय उन्होंने अपने प्रदेश की बहनों के सिर से घड़ा उठाया था, आज उनको पानी वाला मुख्यमंत्री कहा जाता। देश के प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल छोटा सा प्रदेश, 3-3 4 लेन का काम चल रहा है मेरे लोकसभा क्षेत्र में, कोई अंदाजा लगा सकता था? टनल्स बन रही हैं, और उससे आप एक अंदाजा लगाइए, क्योंकि जो मैं अगर अपने ही लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र, कांगड़ा और जिला चंबा, दो जिले मेरे लोकसभा क्षेत्र में आते हैं
7: जी,
8: और पर्यटन की दृष्टि से इतना खूबसूरत लोकसभा क्षेत्र कहीं है भी नहीं। लेकिन क्या जरूरत है? कनेक्टिविटी की जरूरत है
7: जी।
8: क्या जरूरत है? हवाई सेवाओं की जरूरत है। क्या जरूरत है? रेल की जरूरत है, और उस दिशा में जोर से काम हो रहे हैं। अब पठानकोट मंडी 4 लेन का काम करीब करीब 80% पूरा हो चुका है, आने वाले एक वर्ष में बिल्कुल सुचारू हो जाएगा। लोकसभा में ट्रेन की ब्रॉडगेज करने की लड़ाई में लड़ रहा हूं बार बार, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं, क्योंकि जो स्टडीज हैं, जो मैंने भी अलग अलग जर्नल्स में पढ़ के, अलग अलग गूगल में सर्च करके देखा है, टूरिस्ट कहां जाता है? टूरिस्ट वहां जाता है जहां रेल जाती है। टूरिस्ट अपनी गाड़ी में जाना पसंद नहीं करता, टूरिस्ट बस में जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि रेल में हर सुविधा होती है। आंख बंद करके अपने डेस्टिनेशन से बैठ जाओ, जहां आपने पहुंचना है आंख बंद करके आप पहुंच जाएंगे, और हर सुविधा ट्रेन के अंदर उपलब्ध होती है। इसके लिए कोशिश की जा रही है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि उसके बड़े सुखद परिणाम आने वाले समय में हमें मिलेंगे, ऐसे विश्वास दिला सकता हूं आपको। तो कनेक्टिविटी इस क्षेत्र की, हिमाचल प्रदेश की जो पर्यटन है, मेरा तो ये मानना है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिमाचल प्रदेश का भला यदि कोई क्षेत्र कर सकता है, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को यदि कोई क्षेत्र सुदृढ़ कर सकता है, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकता है, वो केवल पर्यटन का क्षेत्र है, और उसमें कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, उसमें बड़े जोर से काम चल रहा है
9: जी। जी, पर्यटन की आपने बात की है, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से हिमाचल के शक्तिपीठों और अन्य तीर्थ स्थलों को क्या लाभ मिला है?
8: देखिए, हिमाचल देवभूमि है, शिव भूमि है, और चार चार देवियां इस क्षेत्र में हैं, माँ चिंतपूर्णी, माँ ज्वालामुखी, माँ ब्रजेश्वर।

0: माँ चामुंडा, माँ बगलामुखी, अगर चंबा की तरफ चले जाए तो लक्ष्मी नारायण, भले ही माता, और साथ में देखिए तो हिस हॉलीनेस दलाई लामा यहाँ हमारे लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले हैं। तो इसके लिए एक कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हम जैसे आप धार्मिक सर्किट बनाने की आवश्यकता है, अंब तक हमारी वंदे भारत आती है। अंब और माँ चिंतपूर्णी, ज्वाला, कांगड़ा, ब्रजेश्वरी, चामुंडा और बगलामुखी और चंबा, इसके बीच में केवल एक पहाड़ है। उस पहाड़ को काटकर वंदे भारत इन देवियों के चरणों में भी आ सकती है। इससे क्या होगा, एक धार्मिक सर्किट बनेगा, चिंतपूर्णी से शुरू होकर चंबा, चंबा से वहां से एक टनल का प्रपोजल है, वहां से सीधे लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति से सीधे मनाली। तो एक सर्किट, कम से कम टूरिस्ट जो है 10 दिन तक मेरे लोकसभा क्षेत्र में रुक सकता है। तो इसलिए इसकी भी कोशिश की जा रही है। और ये प्रधानमंत्री जी का तो एक विजन है, मतलब हिमाचल प्रदेश को फल राज्य तो है, पर्यटन राज्य बनाने की दिशा की ओर भी अग्रसर है, और उसको बड़ी जोरदार से लड़ाई लड़ी जा रही है।
1: जी, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के कारण आज दूरस्थ गांवों तक डिजिटल सेवाएं पहुंच रही हैं। हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में इस परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं तो ये कह सकता हूं कि ये एक अकल्पनीय कार्य है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, खासकर हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। और मैं कोट करना चाहता हूं, देश के एक वित्त मंत्री हुए हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि डिजिटल इंडिया हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पढ़े लिखे लोग कम है, गरीबी अधिक है, तो किस तरह से डिजिटल इंडिया होगा, टैक्स से भी नहीं है। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, भारतवर्ष डिजिटल इंडिया क्षेत्र में लीड कर रहा है। आज आप चले जाएं, यहां देख लीजिए, छोटे छोटे गांव में जाके देख लीजिए, धर्मशाला तो एक शहर है, आप छोटे छोटे गांव में जाके सर्वे कर लीजिए,
1: जी
0: ठेले वाला भी स्कैनर लेके बैठा है, आप स्कैन करिए, अपनी पेमेंट करिए। तो ये एक, मुझे लगता है कि ये कायाकल्प है इस देश का, हिमाचल प्रदेश का, जहां पूर्ववर्ती सरकारें कहती थी ये संभव ही नहीं है, ये हम कर ही नहीं सकते, देश में तो किया, वर्ल्ड लीडर बन गए। AI समिट, क्या कभी इस देश में कल्पना की जा सकती थी कि विश्व का AI समिट दिल्ली भारत मंडपम में होगा, अभी हाल ही में हुआ है। विश्व में भारत की साख कहां पहुंच गई, डिजिटल इंडिया में इंडिया जो है वो डिजिटल क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर है, और AI जो आज की जरूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी से आप देख रहे हैं, और आने वाले समय में देखेंगे इस क्षेत्र में कितनी उन्नति होगी, और उसमें भी भारत लीड कर रहा है। पूरे विश्व के AI एक्सपर्ट्स का समिट दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी जी ने करवा दिया, तो ये आने वाले समय में बदलते भारत की तस्वीर है।
2: अगर हम बात करें स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
0: ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने एक विजन दिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। इस दृष्टि से लोन, सस्ता लोन देकर नौजवान खड़ा हो, वो जॉब सीकर ना हो, जॉब क्रिएटर बने, वो अपना स्टार्टअप शुरू करके 10 और लोगों को नौकरी दे, ताकि 10 और परिवार उसके जिम्मे लगे, उनको पालने वाला बने, पालक बने, जॉब क्रिएटर बने। इसके लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया योजनाएं, और उसमें मैं देखता हूं कि कितने यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं अब तो। पूर्ववर्ती सरकारों में दशकों में उसकी वो थी, 2 यूनिकॉर्न, 4 यूनिकॉर्न्स, आज हजारों में यूनिकॉर्न्स अगर बने हैं, तो ये पिछले 12 वर्षों की मेहनत है नरेंद्र भाई मोदी जी की, हिमाचल प्रदेश में भी और विश्व में भी, देश में भी। तो ये योजना आने वाले समय में एक क्रांतिकारी कदम लेकर आएगी, और मैं तो ये कहता हूं कि आने वाले समय में जो लक्ष्य रखा है देश के प्रधानमंत्री ने, उस लक्ष्य में ये जो जो योजनाएं वो लेकर आ रहे हैं, वो सीढ़ी का काम करेंगे, दैट विल बी स्टेप लैडर्स इन कमिंग टाइम्स।
2: जी, अगर हम बात करते हैं स्थानीय उत्पादों और वोकल फॉर लोकल को नई पहचान मिली है, तो इसमें हिमाचल के बागवानी और स्थानीय उत्पादों को क्या नया अवसर मिला है?
0: देखिए, हमारा प्रदेश फल राज्य है, और लोकल उत्पाद की जहां तक आपने बात की, अगर मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करूं, चंबा में जाइए आप, चंबा का थाल, चंबा का रुमाल, चंबा की संस्कृति, और उसके ब्रांड एम्बेसडर देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसराइल में जब देश के प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने वहां के जो प्रधानमंत्री को जो उपहार दिया था, वो हिमाचल की टोपी थी और चंबा का थाल था, और चंबा का रुमाल था।
2: जी
0: और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी एक बहन पद्मश्री चंबा के रुमाल के कारण है। हमारे एक भाई पद्मश्री विजय शर्मा, जो हमारी कांगड़ा पेंटिंग है, चंबा की पेंटिंग है, उसके कारण पद्मश्री अवार्डी है। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश के उत्पादों को बढ़ाने के लिए मार्केट की आवश्यकता है और उसके लिए कोशिश की जा रही है। जैसे मैं सांसद हूँ, मेरा बहुत अधिक थ्रस्ट इस बात पे होता है। हमारा हमने पीछे एक निर्णय किया है, जितने हमारे उत्पाद हैं, चाहे वो कांगड़ा में हमारे नौजवान कुछ कर रहे हैं या चंबा में कुछ कर रहे हैं, शहद है चंबा का, चंबा की जरीस है, चंबा की चुक है, ये वहाँ के लोकल उत्पाद है, उनको कैसे मार्केट दी जाए। कांगड़ा के उत्पाद है, हमारे जो चीड़ के जो चिला वो होते हैं उससे के कुछ बनता है। पीछे इसकी प्रदर्शनी लगी थी यहाँ वॉर मेमोरियल में, मैं तो देख के हैरान हो गया। तो उसके लिए मैंने एक निर्णय किया था, मैंने जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसकी जो कमेटी है उसका मैं चेयरमैन हूँ, तो मैंने वहाँ आदेश किए थे कि हमारा जो एयरपोर्ट है वहाँ इनको बूथ उपलब्ध करवाया जाए। तो वह किया गया वहाँ, ताकि देश विदेश के जो पर्यटक आते हैं वो हमारे उत्पादों को देखें, समझें, उनको खरीदें, एंड दे आर द रियल ब्रांड एम्बेसडर्स। तो इसके लिए भी कोशिश की जा रही है।
1: माननीय सांसद महोदय, केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग, इन सभी वर्गों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। आपको कौन सी योजनाएं सबसे अधिक परिवर्तनकारी लगती हैं और क्यों?
0: मुझे, जैसे मैंने पहले कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना, इटली देश की जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के बराबर देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर गरीबों को दिए, पक्की छत दी है, और ये सफर जारी है, लंबे समय तक चलेगा।
1: हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है जहां अनेक परिवार भौगोलिक कठिनाइयों और सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण सुरक्षित और पक्के आवास से वंचित रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना के रूप में उभरी है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का, सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। हिमाचल प्रदेश में योजना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हजारों परिवारों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। हाल के वर्षों में राज्य के लिए बड़ी संख्या में नए आवासों को स्वीकृति मिली है, जिससे आवासहीन परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ी है। प्रधानमंत्री आवास योजना न केवल आवास की समस्या का समाधान करती है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, गरिमापूर्ण जीवन, स्वच्छता और ग्रामीण एवं शहरी विकास को भी बढ़ावा देती है। हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे परिवार जो बेघर थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे परिवारों को अपना घर मिल चुका है और आज उनकी खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आइए सुने प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा लाभान्वित कुछ परिवारों के विचार।
3: मेरा नाम शकुंतला कुमारी है, मेरे पति का नाम श्री विकास कुमार है। हमारे आम कच्चे मकान में रह रहे थे, कच्चे घर, कच्ची छत थी, बारिश में पानी अंदर आ जाता था, जिससे हमें बहुत तकलीफ होती थी, बच्चों को बहुत तकलीफ होती थी। जब हमें पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम आई है, तो वहाँ पर गए, उन्होंने हमारे माम को घर डालने के लिए पैसे दिए। हम कच्चे मकानों में रह रहे थे, फिर हम उनसे उनके पैसे से घर बनाए, पक्के मकान बनाए थे, आज हम पक्के मकानों में रह रहे हैं। तो हम प्रधानमंत्री और उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें पक्के मकान दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये स्कीम चलाई है वो गरीबों के लिए बहुत ही लाभदायक है, तो हमने इसका लाभ उठाया, इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें पक्के मकान दिए।
0: ये योजना है, ये मैं ये कह सकता हूँ दूसरे शब्दों में, देश के प्रधानमंत्री तुष्टिकरण नहीं करते, सशक्तिकरण करते हैं। अपीसमेंट नहीं है, एम्पावरमेंट है। महिलाओं को सेल्फ सफिशिएंट, सक्षम बनाने के लिए लखपति दीदी, अब तो ड्रोन दीदी भी बनाई जा रही है, क्योंकि ड्रोन का जमाना है। तो ये कुछ योजनाएं हैं जिन योजनाओं ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश की नारी शक्ति के लिए, देश के किसान के लिए, देश के गरीब के लिए। देखिए, जब कोरोना काल आया था, सब कुछ तहस नहस हो गया, पूरा विश्व तहस नहस हो गया, भारत खड़ा हो गया एक स्थान पर, आवागमन बंद, व्यापार बंद, काम धंधे बंद, सरकारी कार्यालय बंद, कोई कुछ काम नहीं हो रहा था। उस समय देखिए, देश के प्रधानमंत्री को गरीब की चिंता थी। जो अमीर हैं वो तो खा सकते हैं, उनके पास इतना सरमाया होता है, लेकिन गरीब क्या करेगा जो सुबह दिहाड़ी लगाता है और शाम को रोटी खाता है। देश तो बंद हो चुका था। गरीब कल्याण प्रधानमंत्री, गरीब कल्याण अन्न योजना, 50 करोड़ गरीबों को घर में 10 किलो अनाज पहुंचाया देश के प्रधान, वो अभी तक भी चल रहा है। अब 80 करोड़ गरीब उसका लाभ ले रहे हैं। ये योजना, ये क्रांतिकारी परिवर्तन है, ये कोई राजनीतिक कदम नहीं था, ये उस गरीब की चिंता थी जिसको सुबह कमा के रात को रोटी खानी है। अगर काम धंधा नहीं होगा तो कहां से खाएगा, कैसे कैसे पेट पालेगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ गरीबों को आज भी प्रधानमंत्री इस योजना के तहत अन्न दे रहे
1: जी। भविष्य की बात करते हैं, विकसित भारत 2047, इस लक्ष्य में हिमाचल प्रदेश की क्या भूमिका होगी, प्रदेश किन क्षेत्रों में राष्ट्रीय नेतृत्व कर सकता है?
0: मुझे लगता है कि जो विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो इस देश के 140 करोड़ जनता के दम पर दिया है। और मैं एक और जानकारी आपको दे दूं कि देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है 1 लाख युवा आगे आए, निस्वार्थ हों, नेशन फर्स्ट की भावना से काम करने वाले हों। और केवल ये नहीं कि जो उनके जिस दल के वो प्रधानमंत्री उस दल के हों, हर जितने राजनीतिक दल हैं इस देश में, उन राजनीतिक दलों से युवा निकलें और आगे बढ़ें निस्वार्थ होकर, नेशन फर्स्ट की भावना लेकर, क्योंकि उनका मानना है देश को 2047 में यदि विकसित राष्ट्र बनाना है, उस काम के जो ध्वज वाहक होंगे उस देश के युवा होंगे। और जितने मुद्रा योजना, मैंने कहा गरीब कल्याण योजना, मैंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना, और जितनी योजनाएं हैं, लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना, वो समाज के हर वर्ग का सशक्तिकरण, और सबसे बड़ा डिजिटाइजेशन ऑफ इंडिया, उससे भी बड़ा एआई के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, जो लक्ष्य है, उसको आगे बढ़ने के लिए 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये सबसे बड़ा हथियार होगा, आने वाले समय में ये काम होगा।
1: माननीय सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, आपने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की विभिन्न योजनाओं, हिमाचल प्रदेश के विकास, जन कल्याणकारी पहलों तथा भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए, इसके लिए आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद।
4: अभी आपने सुना केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर विशेष श्रृंखला। केंद्र में
5: अभी आप सुन रही थी केंद्र की सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर डॉक्टर राजीव भारद्वाज, लोकसभा सांसद से विशेष भेंट वार्ता। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब कुछ संदेश।
6: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
7: पीएम किसान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
6: अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम किसान।
8: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी।
9: SUV का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स, और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
10: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
11: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
12: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through six airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
13: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
9: नई विक्टोरियस स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
5: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या और रात्रि 9 अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए

0: जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
1: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9,00,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित

0: समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2 लाख से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं था चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें NVIDIA और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत

0: ने 29वें ओवर में एक विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the President said India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.
2: Since assuming the office, Prime Minister Narendra Modi has taken several steps in the national interest. This month, he set a record for the longest continuous tenure as an elected Prime Minister. On behalf of all citizens, I congratulate him on this historic achievement. I wish that he may continue to benefit the people of the country with his vision and lead the nation in realizing the resolve to transform India into Viksit Bharat by 2047.
1: Addressing the public gathering, Prime Minister Narendra Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India. He said the centre's Purvodaya vision aims to drive India's growth through the rapid development of eastern India.
3: Odisha mein aarthik gatividhiyan, nivesh aur udyogon ko आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: The Prime Minister today inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. He also extended birthday greetings.

0: played at NRG Stadium in Houston, United States. The two sides have met 20 times in the past. Their most recent encounter was during the 2018 FIFA World Cup qualifiers in 2017. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. That is all in the news at 9. Good night.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम हेम दर्शन रिले किया जाएगा।
2: श्रोताओं नमस्कार। साप्ताहिक समाचार डायरी हिमदर्शन के साथ मैं ज्ञान ठाकुर। इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे इस सप्ताह हुई मुख्य गतिविधियों के बारे में। पहले इस सप्ताह की मुख्य सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से सृजित हुए 70 लाख रोजगार डीबीटी के माध्यम से योजना के लाभार्थियों को वितरित की प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले की 846 पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को दिलाई शपथ, जनसेवा की भावना से कार्य करने का किया आह्वान। 21 जून को होगी नीट परीक्षा। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करेगा राज्य परिवहन निगम। 422 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता हुआ प्रशस्त। हिमाचल को हर वर्ष मिलेगी 100 करोड़ यूनिट बिजली। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव टालने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाली गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कुछ युवा लाभार्थियों से संवाद भी किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से अब तक लगभग 70 लाख रोजगार सृजित हुए हैं और युवाओं को सामाजिक सुरक्षा कवच मिला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और उनका कौशल विकास किया जा रहा है।
3: योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये उनके परिश्रम का सम्मान है। ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहाँ कुछ लोगों को काम दिया है। इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में, उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है।
2: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के दाड़ी मेला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में कांगड़ा जिले की 846 पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने पंचायती राज प्रतिनिधियों को लोकतंत्र की नींव बताते हुए कहा कि ग्रामीण विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच सबसे मजबूत सेतु का कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जन प्रतिनिधियों से निष्पक्षता, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया।
4: नवनिर्वाचित जो प्रधान चुनकर आए हैं, उप प्रधान चुनकर आए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप अगले 5 साल काम करोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2026 से 2031 का जो आपका 5 साल का टर्म होगा, 2032 में प्रदेश जहाँ एक समृद्धशाली प्रदेश होगा।
2: शपथ लेने के बाद चंबा जिले के दुर्गम क्षेत्र पांगे की भिंडरू पंचायत के उप प्रधान देवीचरण वर्मा ने कहा कि सरकार के सहयोग से पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दी जाएगी।
5: देवीचरण वर्मा उप प्रधान के रूप में शपथ लेने के बाद मैं सबसे पहले ग्राम पंचायत भिंडरू के सम्मानित मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। सरकार के सहयोग से हम अपनी पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेंगे।
2: उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कसौली विधानसभा क्षेत्र के कुमारहट्टी में एक आभार सभा को संबोधित किया। उन्होंने नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धरातल तक पहुँचाने में अपना सक्रिय योगदान देंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि कसौली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 225 करोड़ रुपए की सिंचाई व पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि 135 करोड़ रुपए की गिरी पेयजल आपूर्ति योजना का लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है और इसके बनने से क्षेत्र के 55,000 से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अपनी साधारण बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। निगम के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि अपने घर से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और उसके बाद घर लौटने के लिए परीक्षार्थी निगम की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। ये रियायत 20 जून से 22 जून तक मान्य रहेगी। राज्य पथ परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों ने राज्य सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। ये कर्मचारी प्रदेश के अनेक स्थानों पर अपनी मांगों को लेकर गेट मीटिंग कर रहे हैं। नाहन में भी इन कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एचआरटीसी चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले लगभग 75 महीनों से उन्हें ओवरटाइम का भुगतान नहीं हुआ है और मेडिकल भत्तों के रूप में भी लगभग 20 करोड़ रुपए सरकार के पास बकाया है। संघ ने राज्य सरकार व निगम प्रबंधन को कर्मचारियों की मांगें पूरी करने के लिए 24 जून तक का अल्टीमेटम दिया है।
6: 3.5 साल बीत गए, इस सरकार ने निगम के कर्मचारियों का सिर्फ शोषण किया। निगम के कर्मचारियों को सैलरी टाइम की नहीं है। 75 महीनों का ओवरटाइम नाइट जो कि 150 करोड़ बनता है, इन्होंने आज तक नहीं दिया। 20 करोड़ मेडिकल रिवर्समेंट बनता है जो कि 4 साल का है, इन्होंने वो नहीं दिया। 4 वर्दियां हमारी ड्यू है, वो ये देते नहीं। 8 महीने से प्रमोशन बंद है, वो ये करते नहीं। सैलरी तो हर महीने हमारा राइट बनता है, उसको भी लेट रिसीव करते हैं।
2: केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया। सोलन जिले में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ जो 26 जून तक चलेगा। प्रदेश अनुसूचित जाति व जनजाति विकास निगम के प्रबंध निदेशक अजय कुमार यादव ने अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि नुक्कड़ नाटकों, पोस्टर मेकिंग और स्लोगन के माध्यम से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जा रहा है।
7: नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है और ये जो अभियान है 10 दिनों तक चलेगा, 17 जून से 26 जून, और इन 10 दिनों में अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी और हमारी पूरी कोशिश है कि समाज के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते हुए नशे के दुष्परिणाम जो समाज पे हम देख रहे हैं उसको कैसे दूर किया जाए और नशा निवारण अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक और युवा भी जुड़े हुए हैं। स्कूलों कॉलेजों में भी कार्यक्रम किए जाएंगे, नुक्कड़ नाटक भी किया जाएगा, योग दिवस के दिन योगा को भी आयोजित किया जाएगा, मैराथन का भी हमारा कार्यक्रम।
2: हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की सीमा पर टोंस नदी पर 15,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित 422 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस परियोजना की वित्तीय लागत वहन करने संबंधी मामले को मजबूती से उठाया, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब परियोजना के जल घटक के रूप में लाभान्वित होने वाले राज्य दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा हिमाचल के हिस्से के विद्युत घटक के रूप में होने वाली करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत को वहन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के पूर्ण होने पर राज्य को विद्युत घटक के रूप में प्रतिवर्ष 100 करोड़ यूनिट बिजली की हिस्सेदारी मिलेगी, जिसकी अनुमानित लागत करीब 600 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष होगी। आकाशवाणी शिमला ने 16 जून को अपना स्थापना दिवस मनाया। 16 जून 1955 में आकाशवाणी शिमला की स्थापना हुई थी। करीब 71 वर्षों के इस सफर में आकाशवाणी शिमला ने अपने श्रोताओं के लिए ज्ञानवर्धक व मनोरंजन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए हैं। आकाशवाणी शिमला के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी कश्मीर सिंह ने कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 71 वर्षों में आकाशवाणी शिमला ने विश्वसनीय व मनोरंजन से भरपूर जानकारी लोगों तक पहुंचाई है।
8: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस आदर्श के माध्यम से आकाशवाणी ने 71 वर्षों में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में अथक प्रयासों से कार्य किया है और श्रोताओं को विश्वसनीय और सशक्त तरीके से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। श्रोताओं, इतने वर्षों में आपने आकाशवाणी परिवार पे अपना विश्वास बनाए रखा है, वो विश्वास आप आने वाले समय में भी बनाए रखेंगे।
2: केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख अनिल वर्मा ने कहा कि आकाशवाणी शिमला अपनी स्थापना से लेकर अब तक हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति और विभिन्न बोलियों के संवर्धन और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने श्रोताओं से कार्यक्रम के संबंध में अपने सुझाव देने को भी कहा है।
9: इन 71 वर्षों के सफर में हमारा ये प्रयास रहा है कि हम जन जन से जुड़ें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं उनके बारे में भी लिखें, और यदि आपके कोई सुझाव है कि हम कार्यक्रम में क्या कर सकते हैं इसमें, ताकि आपकी जो इच्छाएं हैं या आपकी जो लगता है कि हमारे को ये कार्यक्रमों में कैसे सुधार किया जा सके, वो विचार हमारे से साझा करें।
2: समाचार एकांश के प्रमुख व सहायक निदेशक रितेश कपूर ने कहा कि आकाशवाणी शिमला ने दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित की है। उन्होंने श्रोताओं का आभार जताते हुए भविष्य में भी जन सेवा की भावना से कार्य करने का भरोसा दिया।
10: प्रादेशिक समाचार एकांश ने विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के दूर दराज और जनजातीय क्षेत्रों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करते हुए निरंतर तत्परता, सटीकता और विश्वसनीयता के साथ श्रोताओं का विश्वास अर्जित किया है। मैं प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से सभी श्रोताओं, सहयोगियों और विशेष रूप से युवाओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके विश्वास और सहभागिता ने ही हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है।
2: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनावों को टालने का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की प्रचंड जीत हुई है और जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह नकार दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 12 जिलों में से 10 पर भाजपा अपने जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाने जा रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार हार के डर से इनके चुनाव नहीं करवा रही है।
11: वर्तमान कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो लोकतंत्र की सबसे मूल इकाई है उसका जनादेश आया। अरे जब पार्टी का पदाधिकारी चुनाव लड़ता है, पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, तो वो अपने आप में एक सिंबल की तरह ही देखा जाता है। चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता ने जिताया। आज हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषद में से 10 जगह भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। जिला परिषद में जहां भाजपा का बहुमत है वहां डेट नहीं दी जा रही है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव।
2: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने किशाऊ बांध व रेणुका बांध जैसे मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया था और उसी के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री इसका विवजा श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं।
11: जितना प्रभावी ढंग से हमने हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखा है, शाऊ डैम को लेकर के, रेणुका डैम को लेकर के, ये सारी चीजों को लेकर के वही आधार बना, उसी बात को लेकर के उन्होंने अपना पक्ष आगे रखा और धन्यवाद उनको करना चाहिए। केंद्र की सरकार ने हिमाचल के हितों को सर्वोपरि रखा। हिमाचल के लोगों का भला हो, हिमाचल का हित उसमें ठीक प्रकार से सुरक्षित हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने जो सहयोग दिया उसके लिए उनको धन्यवाद करना चाहिए।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत देश भर से आए 63 युवा प्रतिभागियों को रिकांगपियो से लाहौल स्पीति व किन्नौर जिले के सीमावर्ती गांव के लिए रवाना किया गया है। ये युवा सीमावर्ती गांव में लोगों से वार्तालाप कर सामाजिक, सांस्कृतिक और जन जागरूकता गतिविधियों में भाग लेंगे। इसी के साथ हिमदर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुतकर्ता रितेश कपूर और प्रवक्ता ज्ञान ठाकुर।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:30 हुए हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम चित्र भारती रिले किया जाएगा।
12: बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी और आपको भी योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।
13: ऑन द ईव ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे यू आर लिसनिंग टू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद प्रताप राव जाधव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। Interviewer was Deeksha Saxena, Akashvani correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
14: Spotlight.
15: ये आकाशवाणी है। आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
16: साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सुनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ में गाया था।

ये जिक्र जरूरी है कि उस्ताद आमिर खान साहब ने सिनेमा के लिए शायद सबसे पहले नौशाद के ही संगीत निर्देशन में गाया था। फिल्म थी सन 1954 में आई शबाब। दूसरी बार उन्होंने सिनेमा के लिए तब गाया जब वी शांताराम ने फिल्म बनाई झनक झनक पायल बाजे, साल 1955। सन 1956 में राजा नवाथे की फिल्म आई बसंत बहार। इस फिल्म में ऐसा मौका आया जब फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्ती पंडित भीमसेन जोशी को हराने की जिम्मेदारी पार्श्व गायक मन्ना डे को सौंपी गई। मन्ना डे तनाव में आ गए और चुपचाप पूना चले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपका जो फर्ज है वो आपको निभाना होगा, ये तो सिर्फ फिल्मी गाना है, आपको ये गाना रिकॉर्ड करना ही होगा। और तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ जो कालजयी बन गया।

0: अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था, और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये
1: जो गाना बना,
0: और दूसरा गाना था

सन 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने। वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: क्योंकि यहाँ हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया, तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

0: जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी।
1: हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर
0: पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे।

सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जाने माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला
1: जो तुम तोड़ो पिया।
0: जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

0: आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। 5 बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद

एक मराठी फिल्म में गाना गाया। उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

0: जानवर
1: मेरे संग कोई गीत सुहाना मेरे संग
0: और राजकुमार
1: हम चले आए जान हथेली पर ले आए रे।
0: सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई वर्षों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हों या शांति में, सुख में हों या दुख में, परिवार के साथ हों या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हों या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर उधर से इधर आ जा रही थी बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया। फिल्म सूरज।

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ते उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम 5:00 शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इन पुनर्परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा से पूर्व राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी मॉकड्रिल आयोजित किए हैं। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवत तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का ढांचा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच और शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the president said, India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.
5: Since assuming the office, Prime Minister Narendra Modi has taken several steps in the national interest. This month, he set a record for the longest continuous tenure as an elected Prime Minister. On behalf of all citizens, I congratulate him on this historic achievement. I wish that he may continue to benefit the people of the country with his vision and lead the nation in realizing the resolve to transform India into Viksit Bharat by 2047.
4: Addressing the public gathering, Prime Minister Narendra Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India. The Prime Minister today inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. He also extended birthday greetings to President Draupadi Murmu and said it was a privilege to visit her native village, Paharpur. Later, Prime Minister Narendra Modi took part in Paschim Bango Divas celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district of West Bengal. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme worth 18,880 crore rupees, benefiting over 9.44 crore farmers across the country. The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination is scheduled for tomorrow. The re-examination will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Ahead of the examination, the National Testing Agency, NTA, has conducted nationwide mock drills as part of the preparations. The NTA said it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the examination. Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah today inaugurated Sri Ambabai Temple Development Project in Kolhapur worth over 1,445 crore rupees. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and other dignitaries were present on the occasion. Addressing a public gathering, Mr. Shah said the Sri Ambabai Temple, located in the historic city of Karvir, is a major centre of faith for devotees from across the country. At least 5 devotees lost their lives and nearly 40 others were injured after a portion of a temple structure collapsed in Manvat Taluka of Maharashtra's Parbhani district today. The incident occurred when a large number of devotees had gathered at the temple for darshan. Rescue teams rushed to the spot and launched relief operations immediately. Around 20 to 25 people were rescued from the debris, while nearly 15 injured devotees are undergoing treatment at a nearby hospital. Prime Minister Narendra Modi and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis have expressed their condolences to the families of the pilgrims who lost their lives in the accident. Chief Minister Devendra Fadnavis announced financial assistance of 5 lakh rupees each for the families of those who lost their lives in the accident. International Yoga Day 2026, IDY 2026, will be celebrated tomorrow to mark the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. The main event of IDY 2026 will be held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the common yoga protocol. Iran's Joint Military Command announced today that the Strait of Hormuz has been closed once again, citing continued Israeli military operations in Lebanon and what it described as U.S. bad faith and failure to uphold commitments aimed at ending the conflict. And with that, we end this news bulletin.
6: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के विरोध में हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद किया और तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है, बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। ये विषय उम्र बढ़ने के साथ स्वस्थ, सक्रिय और सम्मानित जीवन जीने के लिए योग का आजीवन अभ्यास करने के महत्व पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में हजारों लोग योगासन करेंगे, जबकि देश दुनिया के लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक रिपोर्ट।
7: नेपाल में आज भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट और बीपी कोइराला इंडिया नेपाल फाउंडेशन के सहयोग से योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी और सैकड़ों लोग शामिल हुए। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। इस कार्यक्रम में लोगों ने बड़े उत्साह से योग सत्रों में भागीदारी की। वहीं जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकीजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। दूतावास ने लोगों को योगासन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस बीच ओमान में भारत के राजदूत प्रशांत पिसे ने भारतीय समुदाय के सदस्यों और भारत के मित्रों को कल दूतावास में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मनोज।
6: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल के नेतृत्व में जबल हवीद पर्वत की चोटी पर सुबह सुबह योगासन और ध्यान के सत्र आयोजित हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन अल एन शहर के भारतीय सामाजिक केंद्र ने किया। उधर दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास दुबई पुलिस की पॉजिटिव स्पिरिट काउंसिल के साथ कल सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक दुबई पुलिस अधिकारी क्लब में योगासन कार्यक्रम आयोजित करेगा। अबुधाबी में भारतीय दूतावास सुबह 8 बजे से 9 बजे तक निर्देशित योग सत्र के लिए प्रतिभागियों को आमंत्रित कर रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से बंद कर दिया गया है। लेबनान पर इजराइल की सैन्य कार्रवाई जारी रहने का हवाला देते हुए ये फैसला किया गया है। एक रिपोर्ट।
8: ईरान ने कहा है कि ये संघर्ष खत्म करने की प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने में अमेरिका विफल रहा है और इससे उस पर

0: विश्वास कम हुआ है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में संयुक्त सैन्य कमान ने चेतावनी दी कि यदि इसराइल के हमले जारी रहे तो और उपाय किए जाएंगे। ये घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब इस सप्ताह के शुरू में अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते के बाद हॉर्मुज के रास्ते वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही फिर शुरू हो गई थी। इस बीच दक्षिणी लेबनान पर इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोग मारे गए। संघर्ष विराम समझौते की खबरों के कुछ घंटों बाद ही ये हमले हुए। लेबनान की राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ने बताया कि हमलों में नाबतीह शहर और पड़ोस के कई गांवों को निशाना बनाया गया। माना जा रहा है कि इस हमले में 7 लोग मलबे में दबे हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमरीका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बातचीत हाल ही में दोनों देशों के बीच हुए समझौता ज्ञापन के बाद हो रही है जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में तनाव और संघर्ष को समाप्त करना है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार और दामाद जेरेड कुशनर भी स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। हालांकि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत कब शुरू होगी इसकी आधिकारिक जानकारी अभी नहीं दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका के बीच व्यापारिक संबंध अच्छे हैं और दोनों देशों के बीच कारोबार जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर में सम्मान मिलता है और वो सशक्त नेता हैं। देश भर में बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव के कारण हफ्तों से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद बोलिविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने अवरुद्ध सड़कों को खोलने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आपातकाल लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बोलिविया के लोग अब सड़क अवरोधों के बंधक नहीं रह सकते जिन्होंने काम, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित कर दिया है। श्रमिक संघों, किसानों और पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस के समर्थकों द्वारा समर्थित ये प्रदर्शन हाल के हफ्तों में और तेज हो गए हैं में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति पाज के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से जारी सड़क अवरोधों के कारण कई क्षेत्रों में भोजन, ईंधन और चिकित्सा आपूर्ति की कमी हो गई है और आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं प्रशांत कुमार।
1: सीरिया के उत्तरी अलेप्पो प्रांत में अज्ञात व्यक्ति ने 2 सैनिकों की हत्या कर दी। रक्षा मंत्रालय के हवाले से सरकारी समाचार एजेंसी सना ने कहा कि दोनों सैनिकों को अलेप्पो के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मनबिज शहर के निकट निशाना बनाया गया। सीरिया में सत्ता हस्तांतरण की अवधि में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। यूनान में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंपीय केंद्र के अनुसार ये भूकंप क्रीट द्वीप पर रेथिमनो शहर के पास 13 किलोमीटर की गहराई पर आया। अब तक जानमाल के किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 218 रन बनाए थे। प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कप्तान शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के विरोध में हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद किया। और तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अभिनीत शुक्ला विद द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सेज इंडिया हैज कंसिस्टेंटली इमर्ज्ड एज वॉइस ऑफ पीस, डायलॉग एंड कोऑपरेशन एज इट बिलीव्स इश्यूज कैन ओनली बी रिजॉल्व थ्रू म्यूचुअल डिस्कशन एंड नॉट वॉर। Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweeps 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with the world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government in presence of Mr. Modi, the president said, India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.
4: Since assuming the office, Prime Minister Narendra Modi has taken several steps in the national interest. This month, he set a record for the longest continuous tenure as an elected Prime Minister. On behalf of all citizens, I congratulate him on this historic achievement. I wish that he may continue to benefit the people of the country with his vision and lead the nation in realizing the resolve to transform India into Viksit Bharat by 2047.
3: US President Donald Trump praised Prime Minister Narendra Modi as a strong and effective leader, describing him as one of the world's most influential figures alongside Chinese President Xi Jinping. In an interview with an American news portal, Trump said, Modi has provided stability to India after years of frequent leadership changes and noted that he has remained in power for more than 12 years. Discussing US-India ties, Mr. Trump said, bilateral trade has become fairer and noted that the two countries continue to do significant business together. Mr. Trump also described Mr. Modi as highly respected internationally and tougher than his calm public demeanor suggests. International Day of Yoga 2026 will be celebrated tomorrow to mark the 12th International Yoga Day with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. The main event of International Day of Yoga 2026 will be held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the Common Yoga Protocol. More from our correspondent.
5: The Ministry of Culture is organizing special yoga celebrations across 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage, historical landmarks, and yoga traditions. As part of this initiative, major celebrations will be held at 12 prominent locations, including Red Fort in New Delhi, Haridwar in Uttarakhand, Konark in Odisha, Hampi in Karnataka, Mahabalipuram in Tamil Nadu, Mumbai in Maharashtra, Nalanda in Bihar, Ahmedabad in Gujarat, Sarnath in Uttar Pradesh, Leh in Ladakh, Hyderabad in Telangana and Silchar in Assam. In coordination with the Indian Council for Cultural Relations, more than 210 Indian missions abroad will organize yoga events at nearly 2,500 locations across the world. In Delhi, yoga celebrations are being organized at prominent public locations including Lawn of Shanti Path, Kartavya Path, New Moti Bagh, CP Central Park, Talkatora Garden and Yamuna Sports Complex. Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
3: Indian embassies and missions across the world are gearing up to celebrate 12th International Day of Yoga tomorrow. Earlier today, the Indian Embassy in Nepal, in coordination with the Lumbini Development Trust and the BP Koirala India-Nepal Foundation, organized a Yoga Day event attended by senior officials and hundreds of yoga enthusiasts. The Indian Embassy in China also shared glimpses of the celebrations in Beijing, where scores of people actively participated in yoga sessions in Beijing. The Indian Embassy in Japan announced that it will hold Yoga Day celebrations tomorrow

10:31 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सबका प्रोग्राम हर सिंगार में। आपके साथ मैं विकास।

0: डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lalchai, and the Drut composition set to Teen Taal

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Rag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में

0: राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
2: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today said that tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, empowered by a range of welfare and outreach initiatives of the centre. Addressing the public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, the Prime Minister lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Manjhi. He said the centre's Purvodaya mission aims to drive India's growth through the rapid development of eastern India.
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: On the occasion, the Prime Minister inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth